तीजन भाई वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल 1956 इन गनियारी विलेज ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ इन टू अ हम्बल फैमिली. फ्रॉम हर चाइल्डहुड शी हैड ए डीप पैशन फॉर लिसनिंग टू एंड सिंगिंग द स्टोरीज ऑफ द महाभारता. डिस्पाइट सोशल अपोजिशन एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स शी नेवर गेव अप हर पैशन. एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड इन अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन टू परफॉर्म पंडवानी इन द कापालिक स्टाइल. हाउएवर तीजन भाई ब्रोक दिस कन्वेंशन एंड कार्व्ड distinct identity for herself on the stage. With a powerful voice, compelling acting and unique style of presentation, Tijan Bai gave Pandwani recognition not only across India but also on the international stage. Her remarkable ability to bring the stories of the Mahabharata to life made her one of the most distinguished exponents of India's folk culture.

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मू जलडमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारम्भात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण सम्बद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य

0: 7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനിയുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ദോഹയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ സാധ്യതകൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തി. ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ശ്രീ എസ് ജയശങ്കർ സന്ദർശിക്കും. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിലെ ലഹരിമരുന്ന് വിരുദ്ധ ഏജൻസി മേധാവികളുടെ യോഗത്തിന് ഇന്ത്യ വേദിയാകും. 2 ദിവസത്തെ യോഗം നാളെ ഗുവാഹട്ടിയിൽ ആരംഭിക്കും. മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ നേരിടുന്നതിൽ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബ്രിക്സ് വനിതാ മന്ത്രിതല യോഗവും ഇന്ത്യയിലാണ്. വനിതാ ശിശുവികസന മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി കൊച്ചി നഗരം വേദിയാകും. 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. പ്രതിരോധശേഷി, നൂതനാശയങ്ങൾ, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രമേയം. കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 5ാം സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നാളെ. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ മുഖ്യാതിഥിയാകും. 50,000 പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരിക്കുന്നതായുള്ള പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തും. 232 ധാന്യ സംഭരണശാലകൾ, ദേശീയ സഹകരണ ഡാറ്റാബേസ്, ജിയോ ടാഗ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് പോർട്ടൽ എന്നിവ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ഈ മാസം 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ചേരും. ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകിയതായി പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമവും നയവും സംബന്ധിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന അന്തർ സർക്കാർതല വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ 9ാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ സെക്രട്ടറി നിധി ഖരെ അധ്യക്ഷയാകും. ഈ മാസം 8 വരെയാണ് പരിപാടി. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് പ്രകൃതിവാതക വിതരണത്തിന്മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന അടിയന്തര നിയന്ത്രണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. വെടിനിരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ആഗോള എണ്ണ വിപണിയിലെ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒപെക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പ്രതിദിനം 1.88 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ അധികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഒപെക് യോഗത്തിൽ ധാരണയായത്. ഇക്കൊല്ലത്തെ കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായി. ആദ്യ സംഘത്തിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി തുടക്കം കുറിച്ചു. ചമ്പാവത് ജില്ലയിലെ തനക്പൂരിൽ നിന്ന് യാത്രയാരംഭിച്ച സംഘത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറും 15 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 49 തീർത്ഥാടകരാണുള്ളത്. ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന്.
2: ആകാശവാണി വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അറ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും AIR News_തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൌണ്ടിലും അറ്റ് AIR News_TVM X ഹാൻഡിലും ലഭ്യമാണ്.
1: കേരളത്തിൽ സെൻസസ് 2027 ഭാഗമായുള്ള വീടുകളുടെ വിവരശേഖരണം തുടരുന്നു. സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ ലഭിച്ച ID പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. സെൽഫ് എന്യൂമറേഷൻ നടത്താത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്യൂമിനേറ്റർമാർ നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും. സംസ്ഥാനതല പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനോത്സവം നാളെ കോഴിക്കോട് നടക്കും. CMM HSS തലക്കുളത്തൂരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ ശംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെയും കർണാടക തീരത്ത് ബുധനാഴ്ച വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. മഴക്കെടുതിയിൽ മുംബൈയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ അതോഷി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 12 വിനോദസഞ്ചാരികളെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ മുംബൈ, താനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊങ്കൺ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീൽ നോർവേയെ നേരിടും. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.
3: 5 തവണ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഇക്കുറിയും കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഗോളടിയന്ത്രം എന്ന് പേരുകേട്ട എർലിംഗ് ഹാലൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന നോർവേയാണ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളികൾ. നാളെ പുലർച്ചെ 1:30 മത്സരം. പുലർച്ചെ 5:30 ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നടക്കും. ഇന്ന് നടന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിൽ കാനഡയെ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് മൊറോക്കോയും പരാഗ്വേയെ ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസും ക്വാർട്ടറിൽ ഇടം നേടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി.
1: വനിതാ T20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ അല്പസമയത്തിനകം ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും ഏറ്റുമുട്ടും. ലണ്ടനിലെ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരം. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതിൽ മെറ്റയ്ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് IT മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളായ INS ഉദയഗിരി, ശക്തി, കവരത്തി എന്നിവ സിംഗപ്പൂരിലെ ചാങ്കി നാവിക താവളത്തിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര പങ്കാളിത്തത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പരിപാടിയെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വ്യാപാരം, കുടിയേറ്റം തുടങ്ങിയ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് ഉപദേശം നൽകുന്നുവെന്ന് കാട്ടി ചില വ്യക്തികൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വസ്തുതാ പരിശോധനാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ടെഹ്റാനിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ മാസം 9 വിശുദ്ധ നഗരമായ മഷ്ഹദിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. തുടർന്ന് 40 ദിവസം രാജ്യത്ത് പൊതു ദുഃഖാചരണമായിരിക്കും. വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളെ തുടർന്ന് സഹായമെത്തിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് വെനസ്വേല ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി ഡോഡ്രിഗസ്. ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഡോഡ്രിഗസ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വെനസ്വേല ആദരിക്കുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. 3000 പേരാണ് ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചത്. 16,000 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രമായ കോംഗോയിൽ എബോള വ്യാപനം തുടരുന്നു. ഇതുവരെ 1528 പേർക്ക് എബോള സ്ഥിരീകരിച്ചു. 492 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ എബോളയ്ക്ക് അംഗീകൃത വാക്സിനോ പ്രത്യേക ചികിത്സയോ ലഭ്യമല്ല. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും. VBG റാംജി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി 25,863 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ. വിദേശകാര്യമന്ത്രി S. ജയശങ്കർ ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ദോഹയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബ്രിക്സ് വനിതാ മന്ത്രിതല യോഗം നാളെയും മറ്റന്നാളും കൊച്ചിയിൽ. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. നാളെ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത. കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ നാളെ പുലർച്ചെ ബ്രസീൽ നോർവേയെയും മെക്സിക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം രാത്രി 8:35.
4: ആകാശവാണി. ഇപ്പോൾ ICC വിമൻസ് T20 വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ലണ്ടനിലെ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ആസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ തത്സമയ വിവരണം കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ ആകാശവാണിയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസിൽ അനന്തപുരി FM പരിപാടികളും കേൾക്കാം.
5: One more run than the opposition, I suppose.
6: As simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
7: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. गर्मी बढ़ रही है लंदन में. विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए. उसी गर्मी को हम यहाँ पे कायम रखते हैं. वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता आपने, सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
8: इस टीम पे, इस पिच पे अगर देखें ना, तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है. अगर और सी अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने. एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर. एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
7: ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगी. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
9: जी मनीष, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं. जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट. लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है. उनको ये एज मिलेगा? मिलेगा
3: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फायदा मिला. इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते. और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं. इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है तो काफ़ी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
9: जी. और अभी रोचक बात यह है कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से. नमस्कार
10: जी. नमस्कार
9: जी. नाम बताइए अपना.
10: जी मैं गुजरात शराब से अशोक नाई बात कर रहा हूँ.
9: जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
10: देखिए मैम, मेरे ख्याल से सोफिया डंकले को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे. और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
9: जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे. सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है. सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम. सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
11: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए. और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी. उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें. बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पे आकर. और इंग्लैंड के कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा. आपके सपोर्ट जो कहते हैं ना, सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, तो चीजें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180. देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा. 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट. इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था. 170 odd runs एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे. स्टिल वन ओवर टू स्पेयर दे हैव फिनिश द गेम. तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है. तो इसलिए 170-180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली.
9: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा इस ग्राउंड पर.
11: 180 बना दीजिए.
7: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85 उसके पास, मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी. बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर है एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं. शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में. हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे लेकिन बहुत डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बोलिंग में भी. अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
8: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं. एलिसी पेरी वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देती है. और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वही वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का. और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
7: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये अली से पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
12: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले दो प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवेंथ अभी तक वो छः बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
9: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार।
13: हेलो
9: जी, नाम बताइए अपना।
13: चेतन शर्मा जी नमस्कार।
11: नमस्कार जी।
13: नमस्कार, आप आ गए तो मेरा बहुत खुशी हो जाता साहब, मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
11: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
13: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है, मेरे को याद है अभी तक।
9: जी सभी को याद है हैट्रिक।
13: और एक मैच में जावेद मियां आपका बॉलिंग में लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था।
11: जी जी जी जी,
9: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
11: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को।
9: जी
7: पाजी, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
9: एक्साइटमेंट
7: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस?
11: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज आता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा अगर मैं कैप्टन होता कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेस करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
9: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाई करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
12: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीथर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीथर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
7: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20। हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रन अप ले रही है, वो थोड़ा सा रन अप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोज में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं।
8: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है
7: जी,
8: तो उनके ज्यादा रन है तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास। एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती है एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती है वो शानदार है, काबिले तारीफ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है, इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं। तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग, आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है।
7: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आएं और एक अगला सवाल पूछें, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में, पाजी आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है
9: जी। और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथ नाइट है और ऑस्ट्रेलियन की नई कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
11: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई है अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूं कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे अभी तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन। जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वांट की कॉन्टेस्ट रहे कहीं, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रही थी कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपने विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट। बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट।
7: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
11: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
7: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए,
9: बिल्कुल वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
14: हेलो नमस्कार मैम।
9: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
14: मैम मेरा नाम वासंदर सिंह है, मैं यूएस सपोर्ट सिटी से बोल रहा हूं।
9: हां जी
14: मैम, जितने भी अभी तक सब लोग ने मैच हमारे जैसे चाहे वो
9: है जी अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है बिल्कुल। दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पर चीज़ें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है। हमेशा हम यही कहते हैं, एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थासारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली।
7: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
12: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे प्लेयर्स जो है वो हम WPL में इनको देखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
9: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है?
8: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम, एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। अब देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है, एंड उनके जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
7: पाजी, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
11: देखिए, मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है, तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 and I want to see Australia chasing it. तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी अ कंटेस्ट, आई वांट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
7: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का, हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
12: हाँ, बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया
7: ऑस्ट्रेलिया राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे, और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।
15: फर्स्ट बॉल 20।
7: आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर है भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
16: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थी कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में।

0: और ऐसे में इंग्लैंड जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं, चर्चा जारी रहेगी। पिच नंबर 10 जिसपे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफ़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं, और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकनकर।
1: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग wherever you are listening. It's a big day at Lord's, where the T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their 7th title, England for their 2nd, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference, Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors, it seems to be good conditions as Vineet has described. It's a fresh pitch, and England will have to get a above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
0: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश, की किस तरह से वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नज़र आ रही हैं, वृंदा राठी, और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज़ की अंपायर जो जिनका कि ये 5वां T20 विश्व कप है, जैकलिन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नज़र आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डैनी वाइट होज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी वाइट होज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है, एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन, देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएं हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की। 1-6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद। एक स्लिप तैयार है, और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास नहीं होकर, बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं, छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूम कर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी, और यही शुरुआत हुई खाते की। 4 रन
2: ये लगा

0: आभा का चौका।
1: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टो ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया और उस पर चार रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेवेलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो चार रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो चार रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में चार रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार। किम गार्थ, और इस बार ज्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको, पॉइंट पे फील्डर है, बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफी घास है, लेकिन नीचे से काफी सूखी नजर आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पे कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग 64 की रहेगी। दोनों ओर एक सार नजर आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। पांच रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने है, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है, और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है? क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है?
2: Certainly looked like that on that occasion. Dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps. Unbelievable luck.
1: किम गार्थ, पांच विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में, बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, एक रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेवेलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहां जहां तक संभव हो पेवेलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स, और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: A tentative start really by England. A streaky boundary for Amy Jones got things underway, and there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field, and that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now, and they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside the off stump, may well be called that. Wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the tram line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge,

0: leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive, outside edge, carries to gully, and taken very comfortably. Australians don't drop catches, Vineet. And that's the dream start for the girls in their green and yellow.
1: Amy Jones, ek bar fir offside mein out ho rahi hain. Predominantly onside ki cricketer hai. Pata nahi kyun jo wicket keepers hote hain wo onside mein zyada mazboot kyun hote hain. Pichle match mein semi final mein bhi point ke aas paas wo out hui thi. Isi tarike ki off stump ke bahar ki slightly wide gain par aur lagbhag usi ilake mein jaisa ki Prakash ne aapko bataya gali pe wo catch out ho gayi. Mahatvapurna safalta mili hai Australia ko aur England ko ab bharpai karni padegi on the back foot shuruaat mein hi. और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाएं तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है.
0: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost three early wickets, and then it was the two captains, the current and the former, Nat Siver Brunt, who will come into bat at number three, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for four. What a terrific shot. That's the class there, just waiting on it, Siver Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it. Getting the inside part of the bat, the ball trickles away towards the offside. There will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there, and Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it, and as a result drove away, and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past umpire Williams, bowls, and Siver Brunt is defending on the offside, out to cover. There will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there, and many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else, but it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton bowled, and this one's a swing and a miss from Siver Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी. और ताज्जुब ये होता है कि ज़्यादा इस मैदान को समझते इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जबकि गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन द स्लोप जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर, दो खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की. गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट. एक समय था एक थर्डमैन लगता था और एक फाइन लेग लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर्स का. अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास, नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी नजर आएगा. क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है. और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं और ये डाउन द हिल है. डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें. गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं. क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टाइम नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को। ताहिला मैग्रा उप कप्तान है, टीम में नहीं है। चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब आईसीसी ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं।
0: They're all World Cup winners, right? That shows the depth of Australia.
1: Danny Whitehorse enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए। मैगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में, दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों को जोर से धीरे से पुश भर किया और 2.3 ओवर के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और वाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांगों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है, इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया। ये होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए। अपनी दाईं तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ। तीन रन अब तक इस ओवर में, दो गेंदे शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर हैं। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास। अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। शिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक उनकी हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है। क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं। ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी तो उठाना है, और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं। लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं शिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदी हैं, दर्शक भरे हुए हैं, लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में, और मैच किसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, परंपरागत प्रतिद्वंदी, कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायत हैं। क्या होगा अंतिम गेंद पर, अच्छी गेंद स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में, अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 14 for 1, 3 overs gone. England haven't really been able to capitalize on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Nat Siverbrunt. There's just been that one bottom edge boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect, and a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left arm spin, and she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in an early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge. Gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
6: ये लगा आभा का चौका।
0: Again, not quite where White Hodge

0: wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge. Keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So two out of the three boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again. Wide of the crease. Short and off the back foot. Crunched. Not timed at all. Diving stop. I think it's Ellis Perry there who dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic. And someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete. Had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siva Brunt. Molyneux. Captain to captain. Straight to the fielder at point. And there will be no chance of a run. It remains 19 for 1. In the fourth over now. 3.5 overs gone. England will have to look at getting a move on here. Molyneux goes down the wicket. Comes Siva Brunt again. There's a bit of turn. This could be tight. The bails have been whipped off. They will go upstairs, I think. We'll have to wait and see whether Vrinda Rathi will actually signal that or will the third umpire just review it and respond. But certainly beaten in the air was Siva Brunt. Had to check her shot. Again outside edge. Quick throw in from Georgia Wall. And I think she's made her ground, but it was tight there. A single that they really shouldn't have been taking a risk with, but managing it. I think 20 for 1. The two batters in mid-conference now, Vineet. Here's the decision. Yes, she looks like she's in, Vineet.
1: बिल्कुल और विकेट कीपर काफ़ी परेशान नजर आई. खफा थी कि वो एक बेहतरीन अवसर को चूक गई रन आउट करने का. सिवर ब्रन को मॉल्यूनू ने 3 बार आउट किया है T20 में. अच्छा मैचअप है, राइट हैंडर और बाएं हाथ का स्पिन बॉलर.
0: Now Wyatt Hodge, who's had a sprint to save her wicket, now waits for Molyneux and she looks to sweep. The ball comes off the bat onto the grill of her helmet. Now will this lead to another small stoppage for a check, safety check, or was it not something that impacted the batter? We'll find out. We don't know that yet. 20 for 1. Siva Brunt is on 7. Wyatt Hodge also on 7. And these two have put on 13 runs. We're in the fourth over, last ball. And it's turned away on the onside to think of a run which isn't there. Excellent over, except for that one-edged boundary. 20 for 1.
1: तो दिलचस्प क्रिकेट चल रहा है. ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी. कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है. स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है. गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नज़र आ रहा है. बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय. और राइट हैंडर्स हैं उधर. आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं. कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा तो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं. लेकिन फिलहाल नेट सिवर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मॉल्यूनू ने आउट किया है. अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नज़र भी आई. कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नज़र नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपना खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हों. ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान. अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी. एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई 4 रन के लिए. 24 रन एक विकेट पर. इस बार उठा कर खेला है, उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है. फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पे कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं. लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े नहीं रह सकते. ये एक विशेषता है इस मैदान की. इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है. उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है. 25 रन एक विकेट पर. 5वां ओवर चल रहा है. टॉस

0: सदरलैंड
1: प्रतीक्षा कर रही है, फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है, बैटर की भी निगाह होगी। नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया। तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है।
2: वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
0: ऑलमोस्ट हार्श।
1: कड़ा निर्णय अंपायर ने, काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया। फ्री हिट मिलेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में, प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है, ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में, मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर, चार रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
1: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट, जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे, लेकिन ये T20 का जमाना है साहब, और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो, अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है। दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में, खराब गेंद, थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई, दूसरे रन के लिए सोच रही है, दो फील्डर झपटे, विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर एक रन की ही थी। पर जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे, अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं, गति का परिवर्तन है निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे, कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का। गार था ये बात करने के लिए और उस सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए, 7, 6, 5, समय रुकता थोड़ी है और ले लिया। सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया हमें रेफरल चाहिए, तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं।
0: माइट बी क्लोज, रिमाइंड्स मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट when Harry Brook was given out, exactly the same situation down the leg side, the umpire declared it a wide and then the replay showed the ball had taken the glove. This will tell you, Vineet.
1: बिल्कुल, ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है, निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है, और यहां विकेट कीपर एमी जबकि ग्लव्स के पास से एज नजर आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहां, अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं, ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था वो कैच किया था और रेफरल मिला, उनके रेफरल दो अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को दो दो इस इनिंग्स में, सफल जब तक वो रहेंगे जब तक दो बने रहेंगे, पूरे हाथ आगे फैलाए, पोजीशनिंग अच्छी थी, अनुमान अच्छा लगाया था हालांकि अनसाइटेड थी बैटर के द्वारा, और उसके बाद भी मुनी जिन्होंने कि अब तक 5 कैच पकड़े हैं पीछे विकेट के इस टूर्नामेंट में, अपना पूरा अनुमान लगाकर और उसका लाभ दिया और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर सलाह भी दी कि लीजिए इसमें गुंजाइश है और अब उंगली उठती हुई विंदा रेड्डी की जबकि बैटर जा रही हैं, तो दबाव इंग्लैंड के ऊपर अचानक नजर आ रहा है।
0: एब्सोल्युटली, एंड सो द लीडिंग रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट डैनी वायट हॉज जॉइंस हर ओपनिंग पार्टनर एमी जोन्स बैक इन द लॉर्ड्स पवेलियन, इंग्लैंड इन ट्रबल आई वुड से having lost the second wicket for 32.
1: तो ऑस्ट्रेलिया न केवल दो विकेट ले चुका है और रन बनाने की गति जो पावर प्ले में इंग्लैंड रखना चाहता है, हर टीम रखना चाहती है क्योंकि दो ही फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाए हैं, और एक वो जो पार्स स्कोर की जो परिकल्पना उन्होंने की होगी और जो दिमाग में बैठा होगा उसका इस पिच को देखकर और परिस्थितियों को देखकर अब संभल कर खेलना होगा, ज़्यादा विकेट वो खोना नहीं चाहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान

0: पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In the other round of 16 matches, top seed Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka and Switzerland's Belinda Bencic and meet Coco Gauff of the United States later tonight. In the men's singles, the round of 16 match between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sofalian of Russia is underway. Later tonight, top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave revered shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defence manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: ആകാശവാണി ICC വിമൻസ് T20 വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോർഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ആസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൻ്റെ തത്സമയ വിവരണം തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ ആകാശവാണിയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസിൽ അനന്തപുരി FM പരിപാടികളും തുടരുന്നു.
2: उसको उठाने के लिए और एक रन से संतुष्ट है. नौवां चौका था पारी का, एक छक्का है. तो ये अनुमान लगाना होगा, पिच की तासीर को अब समझ गए. सिल्वरबर्न कप्तान है, स्वयं फैसला कर सकती हैं कितना आक्रामक उनको होना है, पिच कितना अलाउ कर रही है और कितने रनों की आवश्यकता होगी. भाई एक जवाब तो सीधा साधा है, ज़्यादा से ज़्यादा रन चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. वो आपको बख्शते कहाँ हैं. और बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो लूसी हैमिल्टन जो नंबर 11 पर आएंगी, वो अंडर 19 कैप्टन है और नंबर 3 पर खेलती थी. 98 रन 4 विकेट पर. सदरलैंड की तीसरी गेंद 15वें ओवर की और शफल करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आ गई और फिर घूमकर उल्टा खेला उसको, ऑन साइड में मोड़ दिया उस गेंद को. बाउंड्री लाइन के करीब वो गेंद फील्ड हो रही है, तब तक पलटकर आती है क्या दूसरे रन के लिए. देखिए रफ्तार में लगातार परिवर्तन, केवल 103 क्लिक्स की थी ये गेंद. 99 रन 4 विकेट पर स्कोर है, केवल एक रन मिला उस गेंद पर. अनुमान लगाया था, थोड़ी सी वहां पर समझ होती, पहला रन तेजी से लेती तो शायद हो सकती थी कि वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ सकती थी. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, इस बीच ये गेंद धीमी गेंद थी आगे और क्योंकि गेंद की रफ्तार कम थी संतुलन चूके, लेकिन संतुलन फील्डर का भी चूका और बाउंड्री लाइन से जाकर टकरा गई. 4 रन मिल गए इंग्लैंड.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: और इसके साथ ही इंग्लैंड के पारी के 100 रन पूरे हुए 14.4 ओवर की बैटिंग करने के बाद. ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला उसको और डाइव लगाते हुए फील्डर के हाथ से लगने के बाद गेंद जाके टकरा गई. वेयर एम वहां पर मौजूद थी. इस बीच ये गेंद सदरलैंड की अगली गेंद, ड्राइव किया और गेंद जा रही है फील्डर के पास. एक रन लेने से नहीं रुक सकेंगे. चार विकेट पर रन बनाने का औसत अब पहली बार 7 के ऊपर जा रहा है. फील्डर नहीं बल्कि बॉलर भी जिस तरह से फिसली थी उस गेंद को लेने के लिए, हाथ ऊपर किए थे उन्होंने, उनके उंगलियों के पोरों से लगकर गेंद पीछे की तरफ चली गई थी. सदरलैंड का ये ओवर 15वां ओवर है, पारी का एक गेंद शेष है, फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। वेरम आमतौर पर सब कुछ झोंक देती हैं, डाइव लगाई थी, पसर गई थी वहां पर, लेकिन फिर भी उसको हाथ से छिटकी हुई गेंद को अंततः दोबारा प्रयास करने पर भी रोक नहीं सकी। ये अंतिम गेंद थी, इस पर भी सिंगल मिल जाएंगे, 4 सिंगल 2 चौके इस ओवर में और 15वें ओवर की समाप्ति पर 105 4 विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: 15 overs have been completed. Time for England to now go on the charge, one feels. The charge of the light brigade will be required. 105 for 4, this partnership worth 35 important runs. But England will be targeting at least 50 runs from these last 5 overs. And that means they'll have to get a move on. Molyneux, 2 overs so far. Comes in and bowls, and the first one's punched away through extra cover. Wide-ish mid-off region. And nicely timed indeed by Siva Brunt to get to 41 now. And England move to 109 for 4. Good start to the over. It's always a good thing for a batter if you can get some runs off the first ball.
3: Ye laga aabha ka chauka.
7: Molyneux in again, bowls, and this one's short and has been pulled away on the onside. Will this be cut off? Yes, it is. Georgia Wareham's there. Just a single at the deep mid-wicket region. And one more to the total. Freya Kemp on 22 of 13. She has been the one batter who has seemed to have timed the ball well. She's played two or three very delightful shots. One was the flick of the hip. The other one was the whip through the mid-wicket region. Certainly timing it superbly. Here's Molyneux. Balls now to the left-handed Kemp, who's off the back foot, not able to beat the fielder at short extra. No run. 110 for 4 it remains in the 16th over now. Run rate just creeping over 7 runs and over. Kemp high back lift, waits now, bat raised, looking for a forcing shot, gets a thick outside edge. The ball's running down towards the third man boundary. Will it be cut off? Yes, it is. As you'd expect, the Australians don't let too much go past them. 2 more runs to the total. Nevertheless, 112 for 4 with 2 balls of the 16th to come. Molyneux, left arm spin going really wide of the crease, and as a result that outside edge just flying away very fine, but no pace on the ball to really work with for Kemp. And that's something that Vineet's been consistently telling you. Here's Molyneux, last ball of the over, no, fifth ball of the over, worked away nicely wide of mid on for a single by Kemp, and this partnership now is worth 43 with that single. 113 for 4. Last ball of the 16th coming up, and the field changes for the right-handed Siva Brunt. The right-left combination working to England's advantage, but Australia won't be too fussed. Balls to Siva Brunt, who works it away on the onside, paying it with soft hands. They look for the second run. Will they get it? No, there's no chance. A single is all they'll get. Over bowled, 16 gone. 1-1, 4 for 4.
2: हालांकि कोशिश की है इंग्लैंड के बैटर्स ने कि विकेट के पीछे, और इसीलिए कई बार वो मुसीबत में भी पड़ी और विकेट भी खोया है उन्होंने, क्योंकि उस ओर बाउंड्री शॉर्ट हैं, विकेट के पीछे लगभग 55-58 मीटर की बाउंड्रीज हैं, उसको टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन अब उस जगह ये मैच पहुंच गया है, ये पारी पहुंच गई है। यहां एक तो दोनों फिनिशर जो अब तक रही हैं इंग्लैंड की, एक तो फ्रेया कैंप उनमें से हैं जो कि मैदान पर पहले से ही मौजूद हैं, और उसके बाद डेनी गिब्सन आएंगी, वो भी आक्रामक शैली से खेल सकती हैं। अगर ये दो खिलाड़ी यहाँ से कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेल पाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया का भरोसा भरेगा कि इस पिच में स्ट्रोक्स लिए जा सकते हैं। तो ये एक सारा नज़रिया है, समय के साथ पल पल रंग बदलता टी20 का खेल है। और 114 चार विकेट पर 16 ओवर के बाद इस फाइनल मुकाबले में लॉर्ड्स क्रिकेट के मुख्यालय में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबला यहाँ चल रहा है। और अब ये देखना, 6 बॉलर्स का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी हैं और देखना है कि अब किसके हाथ में वो गेंद देती हैं। गार्थ, किम गार्थ को 3 स्पेलों में इस्तेमाल किया है, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर्स को बदला है। लेग स्टंप के बाद पिच छिटकती हुई गेंद, क्या वाइड का इशारा आएगा अंपायर का? जी हाँ,

0: बन गए हैं कि आक्रामक खेलना है। चौथा ओवर है, अंतिम ओवर है गार्थ का, 10 डॉट बॉल्स हैं उनकी, 14 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया है। हैमिल्टन का एक ओवर है, मॉलिन्यू और सदरलैंड का भी एक एक ओवर बचा है, और वेरम और गार्डनर के दो दो ओवर शेष रह जाते हैं। यहाँ से ये 17वां ओवर है, अभी केवल एक गेंद हुई है, बहुत समय ले रहे हैं फील्ड प्लेसमेंट में, मॉलिन्यू ले रही हैं और समय पर ये ओवर समाप्त नहीं कर पाएंगी। अगर ओवर रेट में पीछे पिछड़ेंगी तो बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी कम मिलेंगे, लेकिन सुखद स्थिति में है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पिच का कुछ पता नहीं है, एक एक रन रोकना भी चाहेंगे, ये भी एक नज़रिया हो सकता है। फील्ड प्लेसमेंट में तो आप देखेंगे तो दायरे के अंदर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, 3 ऑन साइड में, 2 ऑफ साइड में, और ये लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रही हैं, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद आ रही है। बैत मुनी को आपके देखें, बड़ी सुरक्षित कीपर हैं और बहुत बढ़िया कैच आज पकड़ा, और फिर अपील भी की और फिर रेफरल भी दिलवाया और उनको विकेट मिला था ऑस्ट्रेलिया को। तब गति पर अगर आप देखें तो सीमर्स बहुत कम रफ्तार की गेंदे करते रहे हैं, 88, 87, 103 फास्टर वन, 99, 92। तो जो प्रकाश और मैं आपको बार बार बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की भी रणनीति धीमी गेंदे करने की, गति का परिवर्तन करने की रही है, अगली गेंद को सीधा खेला है और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, कोई 10-5 गज अंदर गेंद को फील्ड किया जाए, उससे पहले एक रन और सदरलैंड, एनेबल सदरलैंड वहाँ फील्ड कर रही थी। सोफी मेलोनी कप्तान है, एलिसा हिली के बाद ये कप्तान हुई, एलिसा पहले से पहले मैग लेनिंग थी, लंबे समय तक मैग लेनिंग रही, क्या खिलाड़ी थी, फिर संन्यास उन्होंने लिया, हालांकि लीग क्रिकेट और जो चैंपियन जो ट्रॉफीज चलती हैं हर देश में उसमें वो अच्छा खेलती हैं। इस बीच अगली गेंद पर क्या स्ट्रोक, उल्टा घुमाकर खेलने की प्रक्रिया प्रतीक्षा की रैंप कर दिया, सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: गेंद हालांकि हवा में थी ऊपर, लेकिन सोच समझ के उसको, जैसे स्कूप होता है, लेकिन जिस तरह से गेंद फिसली वो रैंप हो गया और फिर वो वहां पर गई। 51 रन की साझेदारी केवल 37 गेंदों पर, तो अब गियर बदला जा रहा है। अगली गेंद और इसको मोड़ा, स्क्वायर लेग अंपायर के पास से फील्ड की जाएगी, अचानक जो खेल हो रहा है अब आप नजरें नहीं हटा सकते, बैटर्स जो हैं रन जोड़ने में लगे हैं और वो गतिविधि और पिच विच का कोई असर नहीं है, वो स्लो स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि वैसे भी पर्याप्त रन बनते नजर नहीं आ रहे हैं, एक आध विकेट और गिर जाएगा तो कोई बात नहीं है। और एक फिनिशर जो कि रोल दिया ही गया है टूर्नामेंट में कि आपको तेजी से रन बनाने हैं, ऑफ स्टंप के बाहर हाफ वॉले चूकी विकेट कीपर के ग्लव्स में, 17वां ओवर पूरा हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: 18th over about to commence. 122 for 4 is the total. And Kim Garth's bowled out. 4 overs, 1 for 20. Ash Gardner round the wicket. Bowls, and this one's pulled away. Backward a square on the onside for a single. One more to the total. And that'll bring up Siva Brunt's 50. Back-to-back 50s for the captain. And our statistician, Om Prakash Sharma, right on the money. 9th 50 in the World Cup, first versus Australia, and 20th in T20 internationals for the England captain. So holding the innings together, Nat Siva Brunt, 123 for 4, and Kemp on 26 on strike now. Looking to play a forcing shot again, no pace to play with at all, and the inside edge results in a squeaky single, 124 for 4. In the middle of the match, once the innings is over, there will be a program from the studios. I'll tell you who you can listen to. This one's bowled, and once again, looking to play the big shot on the onside. Could have been a run-out chance. Shy at the striker's end. The ball runs behind the wicket. And the run is complete and the batter is safe. Rhea Kemp there diving to save her wicket, and just as well.

0: because England would not want to have lost another wicket. Beth Mooney's throw going over the stumps. 124 for four now. Siva Brunt on 50. And this one's been pulled away wide of mid-on. She'll get four runs. Beating Ellis Perry, who was running around to her left. So a welcome boundary for England. 129 for four now. And Kemp moves to 31. Shorted wide, pulled away very nicely by Kemp, sitting on her back foot. And really timed it well. She has, as I said before, been the one England batter who seemed to have got the measure of the pace of the pitch. She struck some good blows with good timing. Gardner in again, bowls, makes some room, goes inside out on the offside, will get runs, but only a single down towards the wide-ish long off boundary. She was looking for a squarer space, didn't get it. 130 for four now, with the last ball of the 18th coming up. 130 for four, 7.3, just a shade below that is the current run rate. Siva Brunt looking to be aggressive now. Bowls, and she goes back in deep in her crease and pulls it away, but only towards deep mid-wicket for a single. 18 overs bowled, 131 for four.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: तो ये दिलचस्प है कि जब पिच में उतनी रफ्तार ना हो और गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, तो आपकी बैट स्पीड बहुत मायने रखती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है। वो काम कैंप ने बढ़िया किया है और इसीलिए वो अब ज़्यादा तेज़ी से खेल पा रही हैं। स्ट्रोक्स अब इस पिच को देखकर उस हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी हैं। सदरलैंड नए ओवर की शुरुआत करते हुए धीमी गेंद और उसमें पूरी ताकत के साथ कलाइयों को घुमाकर मोड़ दिया उसको ऑन साइड में और एक रन ले लिया। सेवा ब्रंट 52 रन बनाकर खेल रही है, नौवा अर्धशतक पूरा हुआ, 132 चार विकेट पर। यह 19वां ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ओवर रह जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रन इंग्लैंड जोड़ना चाहेगा और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से रोकेगा, क्योंकि सेवा ब्रंट काफ़ी देर से खेल रही है, क्योंकि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा शेष रह गई है। अब हर गेंद पर भरपूर प्रहार करने का प्रयास इंग्लैंड का रहेगा। 7.27 का रन बनाने का औसत है। सदरलैंड लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं, 114 के आसपास की इस गेंद पर केवल एक सिंगल। सो सिंगल से ऑस्ट्रेलिया को अब कोई परेशानी नहीं होगी इस समय खेल के, तो बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है। सर हिला रहे हैं बैटर, जिस तरह से कैंप हिला रही हैं उसको देख के लगता है कि निराश हैं। करें तो करें क्या इस पिच पर? फील्ड देखने को मिली तो आप थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पॉइंट भी दायरे के अंदर है, कवर्स है शॉट वो भी दायरे के अंदर नज़र आ रहा है। हवा में झूलती हुई तैरती हुई गेंद को घुमाया लगभग फुल टॉस पे और दूसरे रन के लिए इस बार जा रही हैं। दिशाहीन थ्रो हाफ पिच पर आया, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाती। ये होता है दबाव बनाने का नतीजा। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा हुआ, तीन गेंदें चार रन अब तक बन चुके हैं, 135 चार विकेट पर। ये 19वें ओवर की तीन गेंदें अब तक हुई हैं। शिवा ब्रांड 54 गेंदों पर 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर कैंप खेल रही है, लेकिन स्ट्राइक इस समय सेवर के पास है। फुल टॉस में घुमाया एक बार फिर, उस बार तो गेंद थोड़ी गैप में जाती हुई भी दिख रही थी, इस बार सीधे फील्डर के पास एक रन और। हर गेंद पर रन तो बन रहा है लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है इंग्लैंड को। 5 चौके लगाए हैं ब्रंट ने अपने 55 रनों में 50 गेंदों पर। विकेट के चारों ओर खेली अवश्य हैं लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ खेलने की क्षमता रखती हैं। इम्प्रोवाइज भी किया है, उल्टे शॉट्स भी खेले हैं, रैंप और स्कूप भी खेले हैं। लगातार दूसरे मैच में उनका अर्धशतक, फिर धीमी गेंद हवा में झूलती हुई मोड़ा, बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही हैं। कोई अवसर नहीं दे रही हैं कि बड़ा स्ट्रोक लगे, क्योंकि रफ्तार कम हो और वो भी इस पिच पर तो स्ट्रोक खेलना बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाइट हॉज सबसे अधिक रन इस टूर्नामेंट में 302, साउथ अफ्रीका की ओपनर टैस्मिन ब्रिट्स 225, सेवा ब्रंट तीसरे नंबर पर आ गई हैं 224। सदरलैंड की अंतिम गेंद और लगातार ब्रॉक होल में टिप्पा खिलाती हुई स्विंग होती हुई धीमी यॉर्कर 110 के की, उसको रक्षात्मक रूप से खेला। 19वां ओवर समाप्त हो गया, 137 चार विकेट पर।
0: Right then, we're coming towards the end of the England innings, and after this innings, before Australia start, Free Hit 20 is the program you'll be able to listen, where our experts Chetan Sharma and Vaishali Mathur, both former cricketers, and Mona Parthasarathy, sport journalist, will be in conversation with Munish Jolly and Gitanjali Soni. So do tune in for that at the end of the England batting innings before Australia start their reply. At the moment, the game is poised at 137 for four, with the last six balls to come, and England look well below par, but the wicket has been a little bit strange, it's been a little bit funny, and England spinners will certainly, Charlie Dean, Sophie Eccleston, will be looking to try and make the most of it. Molyneux will finish things off with the final over, first one driven to long on, Perry Fields, one more to the total, and Siva Brunt now on strike. 55 she's got off 51 balls, and 138 for 4, 7.2 the run rate. Fielders now moving around as we come to the closing stages of this game. Now it doesn't matter that the final over has begun. Charlotte Edwards, a close-up on our TV monitor, suggesting that she's got a few worries about where this game might go. Have to wait and see. Now taking her time, Sophie Molyneux, now that the final over has started. Wide of the crease, balls to Siva Brunt, who goes inside out onto the wide-ish mid-off region, and they will come across for the second run. So the England captain trying to get as many as she can. One gets the feeling there might be a close game here if England can pick up a few wickets, but this Australian batting lineup is formidable. 140 for four now. Four balls to come in this England innings. Remember, they were put into bat. Both openers were dismissed for single-digit scores. And then after that, of course, Nat Siva Brunt and Alice Capsey gave some momentum. Capsey fell soon thereafter, looking for a reverse sweep. Heather Knight didn't last long at all, looked out of sorts. And since then, Freya Kemp, who's, I think, been the best batter on view today, has held the innings together along with her captain. Coming down the wicket, flicked away to mid-wicket, just a single. And you can see that when in the final over of the game, the England batters are only able to get singles or twos. That tells you how the ball has dominated the bat. 35 not out Freya Kemp of 25. On strike now. Can she hit a couple of lusty blows? 141 for four. And she's gone straight upfield over the top and manages to get it all the way. Just as I was saying, a few lusty blows. She's hit one straight over the top for six.
3: Ye laga, abha ka chakka.
0: England now coming into striking distance of the 150, 147 for four, and Kemp moves to 41. She can get a couple more boundaries away in the last two balls. That will be very, very welcome for England. 147 for four. Two balls left in this innings. Siva Brunt 58, Freya Kemp 41, and Molyneux in again, pulled away from the crease by Kemp, looking for the second run. They're going for it, this could be tight, and a fumble by Molyneux ensures that Siva Brunt is back into the crease in safety. 149 for four. Nat Siva Brunt on 58. Freya Kemp will in fact face the final ball of the England innings. This was a sitting run out to be made. Molyneux fumbles the throw. It wasn't a great throw, but nevertheless should have been done. Last ball of the innings, and Freya Kemp tonks it away towards deep, wide-ish mid-on. They'll take one, and that's all they're going to get. So England finishing on a round figure of 150 for four, and that means Australia will need 151 if they are to win their seventh title. Time for me to hand over to our hosts of the program, Munish Jolly and Gitanjali Soni.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा?
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: It's 20. स्वागत है आप सभी का फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के पास 151 रनों का टारगेट है। मेरा नाम है मुनीश जॉली, मेरे साथ हैं गीतांजलि सोनी और बहुत छोटे से ब्रेक में हमारे साथ बहुत बड़े दिग्गज पैनलिस्ट यहां जुड़ रहे हैं, चेतन शर्मा जी फॉर्मर इंटरनेशनल, मोना पार्थसारथी और साथ ही साथ गीतांजलि सोनी की बाई तरफ बैठी है। मैं चाहता हूँ कि आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं गीतांजलि
8: जी। बिल्कुल, वैशाली माथुर है हमारे साथ और जैसे हमारे श्रोता जानते हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है अभी और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों के सपोर्टर्स होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो मैच हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन जी से पूछना चाहती हूँ। चेतन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रेडिक्शन वाज बैंग ऑन द वे यू सेड, आपने कितना स्कोर बताया था बताइए।
9: देखिए, मैंने कहा था कि मैंने जो पूरा वर्ल्ड कप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग इकोनॉमी रेट है दैट इज 6.2, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था 140 150 के बीच में, बिकॉज फाइनल्स है, फाइनल्स में ऑब्वियसली इंग्लैंड विल ट्राई द बेस्ट टू रीच 180। अगर आप 180 सोच के जा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई तो 140 150, बट स्टिल आई थिंक गीतांजलि दे आर 30 रन्स लेस,
8: बिकॉज
9: डेफिनेटली इफ यू बैटिंग फर्स्ट इट शुड बी 180, बट इंग्लैंड के स्पिनर्स में अच्छा दमखम है, लेट्स सी हाउ दे कम बैक एंड विन अ गेम फॉर देयर कंट्री, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो they have a very good batting lineup, to 30 run mujhe abhi bhi lagta hai kam hai england ke,
8: so clearly england is there and giving a good fight and we just have to see how australia fares now,
9: definitely yes, and dekhiye main bar bar ye kehta hu, maine us samay match se pehle wale show mein ye baat ki thi, aap end of the day the bowlers win you the games,
8: yes
9: batters never win you the games, so let's hope ki इंग्लैंड के स्पिनर्स में जो दमखम है वो आ जाए, अपना दमखम दिखाएं और ऑस्ट्रेलिया को मात दे, क्योंकि तीन बार फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी है, 2012, 2014, 2018, तो लेट्स हो 2026 अलग हो इंग्लैंड के लिए।
7: वैशाली, 150 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया, आप ज्यादा चाह रही होंगी, बट क्या ये फाइटिंग स्कोर है?
10: अभी इंग्लैंड की बारी बाकी है एंड वहाँ उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं एंड देखना यह है कि उनके स्पिनर्स क्या कमाल करके दिखाते हैं, वो बहुत जरूरी है एंड 150 स्कोर अगर उनके जिस तरह से उनके पेपर्स पे आंकड़े हैं उनके स्पिनर्स के, तो उस हिसाब से 150 भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए वो। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लॉर्ड्स की पिच पे स्पिनर्स का स्पिनर्स के हाथ में जो बॉल है और वो जिस तरीके से टर्न कराएंगे आज, वो कितना मुश्किल होगा बेथ मुनी के लिए खेलना और हमारी पैरी के लिए खेलना, एलिसी पैरी, तो ये दोनों एक बॉल बैटर हैं कि उन पे ज्यादा इंग्लैंड की आंखें होंगी, नजरें होंगी कि उनको बाहर का रास्ता वो कैसे दिखाए।
7: मोना, एक समय था जब लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम 150 भी ना टच करे, 130 के आसपास, वो एक एक एक क्षण आ गया था वहां पे, लेकिन आपको लगता है एक अच्छी रिकवरी की, क्योंकि पापले उतना तो इफेक्टिव नहीं रहा इंग्लैंड के लिए, बट इट वॉज गुड रिकवरी, आखिरी के 10 ओवर में लगभग 90 टच किया उन्होंने।
11: देखिए बिल्कुल, आप जब दो विकेट आपके पांचवें ओवर में ही गिर गए, पावर प्ले में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, उसके बाद जो आपकी कैप्टन है नेट सीवर ब्रेंट, वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है आज, उसके बाद मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो सोफी मोलिनू है, जब जॉर्जिया वेरहम इतनी अच्छी गेंदबाजी करी थी, दो ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और आपको ये भी पता होगा कि लेग स्पिनर है और नेट को उनके खिलाफ प्रॉब्लम आती है, पिछले 5 T20 इनिंग्स में 3 बार उनको वेरहम ने आउट किया है, उसके बाद उनका कोटा पूरा क्यों नहीं कराया गया, जबकि अनाबेल महंगी साबित हो रही थी, कुछ सोफी बाद में महंगी साबित हुई, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में अगर चतुराई से किया होता तो 130, जैसे कि आप कह रहे हैं 130 के आसपास ही इंग्लैंड का स्कोर रहता, लेकिन आखिर में कुछ फ्रेया कैंप ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जो ऊपर के क्रम के बल्लेबाजों को करनी चाहिए थी।
8: चेतन, बहुत ज़्यादा कुछ कंसर्निंग तो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से, बहुत सारा ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, बैटिंग कोई कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा आपको लगता है कि कंसर्निंग हो सकता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए?
9: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ये टोटल जो 150 का नजर आ रहा है इट वुड हैव बीन 180, मतलब फील्डिंग की आप तारीफ करनी होगी, ऑस्ट्रेलियंस ने जिस तरह की फील्डिंग की, कैचेस पकड़े, अब इंग्लैंड को भी बहुत जरूरी है कि 150 मतलब आपको वो रन्स जो 15-20 रन्स कैसे फील्ड में रोकने हैं, मेक द लाइफ मिजरेबल फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, वो तभी हो सकता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, मतलब उनको 150 बनाने के लिए 170 की बैटिंग करनी होगी, तब वो 150 बनाने के नजदीक पहुंचेंगे। इफ योर फील्डर्स बेसिकली, मैं हर समय कहता हूँ, फील्डर्स अगर अपने गेंदबाजों की मदद कर रहे हैं तभी आप मैचेस जीतेंगे, तो इस समय इंग्लैंड के पास गेंदबाज एंड द फील्डर्स, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया अपनी फील्डिंग में, कमाल की फील्डिंग है। एक कैचेस आप देख लीजिए, जैसे कैचेस पकड़े उन्होंने और जैसी फील्डिंग की है, कम से कम 20-25 रन रोके हैं, तो अदरवाइज दिस टोटल वुड हैव बीन 170 ऑड।
8: एंड पिच इज गोइंग टू बिहेव एनी डिफरेंट?
9: आई डोंट थिंक सो। इट्स अ नाइस बैटिंग विकेट, इट्स अप टू द बॉलर्स, इट्स लिटिल स्लो। आपने देखा होगा कुछ गेंदे बिल्कुल नीचे रह गई है, बिल्कुल लो रह गई है, तो जब गेंद नीचे रहती है इसका मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्पिनर्स। आप थोड़ा धीमा डालिए, गेंद तेज मत डालिए, बल्लेबाज को आने दीजिए गेंद के पास, ना कि आप गेंद को पहुंचाए बल्लेबाज के पास। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज हैं व्हिच आई थिंक सो द बॉलिंग कोच विल बी टॉकिंग टू द गर्ल्स एंड आई होप। मैं अच्छा मैच देखना चाहता हूं। देखिए हम एज ए इंडियन, मेरा इंटरेस्ट तो अच्छी क्रिकेट के ऊपर है, हमारी टीम बाहर है तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि अच्छी क्रिकेट और फाइनल एक फाइनल की तरह लगे, दैट्स इंपॉर्टेंट।
7: राइट देन, टीम भले ही बाहर हो लेकिन अंपायर वृंदा राठी हैं, जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन इंडिया दिखाई देती है। वैशाली, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट द पार्टनरशिप जो हमने देखा शिवा ब्रांड के बारे में, और एक 85 रनों की मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी साझेदारी मैं कहूँगा कैंप के बीच में हुई। यू थिंक क्या फील्डिंग करने जब आएंगे बोलेंगे चलो हमने एक रिस्पेक्टेबल स्कोर इस पार्टनरशिप के जरिए तो कर दिया, देयर सम न्यूज़ फॉर मोटिवेशन?
10: दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन ना स्कीवर का यहाँ पे एक बड़ा रोल है कि जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं ना उन्होंने कॉन्टिन्यूस स्कोर किया है। अगर हम उनके स्कोर की बात करें ना तो कोई भी उन्होंने 40 के अंदर कोई स्कोर नहीं किया, उससे अबव ही किया है, तो ये एक ना बेनिफिट था इंग्लैंड के पास, और इसको थोड़ा सा ऊपर भेजते तो मे बी ये स्कोर डबल हो सकता था आज। एंड अगर हम फील्डिंग की बात करें, जैसे मैंने फर्स्ट पहले भी बोला था कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करके दिखाई है।
7: दोनों क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड टू हियर दैट।
10: एंड इंग्लैंड अगर फील्डिंग ऐसे ही टाइट फील्डिंग करती है एंड स्पिनर उनके टाइट करके बॉल डालते हैं, लाइन टू लेंथ बॉल डालते हैं, तो हो सकता है कि वो ये किताब अपने नाम भी जीत सकते हैं।
7: लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट बन सकती हैं आज इंग्लैंड, मोना?
11: नहीं, मुझे लगता है कि जब बार बार हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके से आप बैटिंग लाइनअप देखिए, जॉर्जिया वॉल से शुरू होता है, बेथ मुनी पर हम बात पहले भी कर चुके हैं, फीबी लिचफील्ड 2022 में डेब्यू किया था उन्होंने, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ICC टूर्नामेंट जीता था, पहली बार फाइनल है और वर्ल्ड कप जीतना चाहती हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, उन पर काफी दारोमदार होगा। एलिस पेरी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो कितनी कमाल की खिलाड़ी है। एशले गार्डनर जो एशेज सीरीज हुई थी 2025 में दोनों टीमों की, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा डेप्थ है, बहुत गहराई है, और ये सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सारा अनुभव है इनके पास। आप एलिस पेरी अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखती है, तो स्कोर वाकई में जो चेतन सर ने कहा 30-35 रन कम रह गया है।
8: चेतन, ऑलवेज वी टॉक अबाउट इज अ प्रेशर ऑन प्लेयर्स एंड इट्स अ बिग फाइनल्स, इट्स अ बिग टूर्नामेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, दे हैव डन सो वेल, दे हैव वन ऑल द मैचेस टिल हियर, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर एक्चुअली प्लेयर्स गो थ्रू?
9: गीताजी, मैं जो बात सोच रहा था ना मेरे दिमाग में, आपने वही क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, आप हमारे समय की क्रिकेट छोड़ दीजिए, आजकल आपको जब आउट होने से डर नहीं लगता ना तो आप निडर हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इंडिया के खिलाफ देखी, द वे दे एक्चुअली बैटेड, वहां से आपको अनुमान लगता है कि जब आपका डर, वो आउट होने का डर खत्म हो जाए ना तो एक्सप्लोसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। आपने ये अंदर प्लान कर लिया है कि अगर वी आर 23-3 ऑल्सो वी विल गो फॉर इट। मतलब आजकल की जो क्रिकेट है वो इस तरह की क्रिकेट होगी, वो मेंस क्रिकेट है, वुमेन्स क्रिकेट, डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स सेम, द मेंटेलिटी इज सेम। जब ये मेंटेलिटी आपकी हो जाती है तो 150 जो अभी हम पासा था शर्मा मैम बोल रही थी और मैं वही पहले बात कर रहा था कि आपको 150 की जगह 180 चाहिए था, एक कुशन चाहिए था आपके बोलर्स के लिए, बट अब आपके पास 150 है, 151 जीतने के लिए चाहिए, यू हैव टू फाइट ऑन दिस, यू हैव टू रियली फाइट, इट्स अ मैटर, आपने इतना हार्ड वर्क किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों अनबीटन साइड्स पहुंची हैं, इतनी मेहनत करके आप पहुंची हैं, और एक मैच की वजह से ट्रॉफी निकल जाएगी हाथ से, यू हैव टू गिव व्हाटएवर यू हैव विद यू, जस्ट गो एंड डू इट।
7: राइट देन, मेरे को ना लग रहा है कि ये शो जब वे बैक 1983 में अगर कोई लंचार शो हुआ होगा तो तक क्या बात की होगी वेस्ट इंडीज के बारे में। चेतन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड की विमेंस टीम भारतीय क्रिकेट टीम की 1983 की जो टीम थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बड़ी जल्दी से सोफी एकलस्टोन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा,

0: शी इज ऑफकोर्स द टॉप सेकेंड बोलर आईसीसी की रैंकिंग्स में, उनका इम्पैक्ट कितना होगा?
1: उनका इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्योंकि अभी तक देखा गया उनकी इकोनॉमी 6 से ऊपर नहीं गई है अभी तक, एंड वो 6-5 के बीच में ही रही है।
0: हाइट भी उनकी 6 फुट है।
1: बिल्कुल, एंड वो 110 प्लस विकेट्स भी उन्होंने लिए T20 के अंदर, तो ये इम्पैक्ट ना एक बेटर है इंग्लैंड टीम के लिए। एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, एंड वही आती है जो बीच में जो मिडल ओवर्स होते हैं उसके अंदर आके वो विकेट्स जो चटकाती हैं वो डिफरेंट होता है, और वहाँ पे उनको लाना और वो विकेट्स आज उनको वो चटकाने बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया टीम के, क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो ये उनको करना पड़ेगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो अपना दिखाना पड़ेगा इस पिच पे आज।
0: राइट देन,
2: एंड यू नो एवरीवन इज एक्साइटेड बिकॉज वी वांट टू सी ग्रेट मैच एज चेतन सेज। वन थिंग विच आई रियली वांट टू आस्क नाउ दैट ऑस्ट्रेलिया इज वेरी कंफर्टेबल, इट्स इंग्लैंड्स ग्राउंड एंड दे नो दैट यू नो दे हैव बीन विनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, व्हाट आर द चांसेस दैट ऑस्ट्रेलिया स्किप्स? Is it overconfidence or it might be like they in their mind have decided they are going to do well?
3: देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो अपने जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेलती है ये वैसे खेलेगी। आपके पास एज ए बॉलर यू हैव ए चांस बिकॉज दे लव द अटैकिंग क्रिकेट। अगर आप मेरे से इस समय ये पूछेंगे कि फेवरेट्स, मैं अभी भी फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया को मानता हूँ, तो विद 150-60-40 रेशियो इन फेवर ऑस्ट्रेलिया आई विल गिव इट।
0: चेतन भैया, बड़ी जल्दी से हमको कमेंटेटर्स को हैंड ओवर करना है। आप फेवरेट तो मार रहे हो लेकिन अंदर की कोई आवाज इंग्लैंड के लिए कुछ कह रही है?
3: आई डोंट नो, आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट इट। यू आस्क मी द ट्रुथ, 180 होता तो मैं जरूर कहता मनीष।
0: मोना, बड़ी जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा, चार्ली डीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आपका मन क्या कह रहा है?
4: देखिए, मुझे अगर स्कोरबोर्ड पे बहुत बड़ा स्कोर होता ना तो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता है। एक यहाँ एक एडिशनल प्रेशर तो है ही कि आपको सिर्फ 150 रन डिफेंड करने, तो उससे थोड़ा सा असर तो पड़ेगा।
0: अब वैशाली, बड़ी जल्दी से योर
1: प्रेडिक्शन।
0: ओके, थर्ड अंपायर का रोल प्ले कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई आपका, मोना पार्थसारथी आपका, और वैशाली माथुर आपका, और गीतांजलि सोनी के साथ मैं मनीष जौली यहाँ पे आप सभी लोग विदा ले रहा हूँ, क्योंकि कॉमेंट्री टीम हमारा इंतजार कर रही है अगले 20 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास, हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे विनीत गर्ग, एंड द बॉल बाय बॉल कमेंट्री इन इंग्लिश विल बी विद प्रकाश वाकनकर, टू लेजेंडरी फिगर्स अलोंग विद द स्कोर ऑफ भूपेंद्र सिंह भाटी, स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू द कमेंट्री टीम।
5: स्वागत है आपका लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर। ये दूसरी पारी 2026 के फाइनल मैच की शुरू होने जा रही है। 151 का लक्ष्य है और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप जीत लेगा, ये स्थिति यहाँ पर है। इंग्लैंड प्रयास करेगा, उनका अपना मैदान है, यहाँ पर वो कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहेंगे। सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कितनी तगड़ी टीम है और मशहूर है कि नॉकआउट में उनके मुकाबले वो बिल्कुल एक तरफा कर देती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं विपक्ष पर। तो क्या ऐसा होगा? इस समय सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। एक रोमांच इस समय तो कम से कम है कि 151 रन है। क्या इंग्लैंड शुरू में कुछ अच्छे विकेट्स निकाल लेता है, जल्दी जल्दी कुछ उसकी विकेट उसकी झोली में आ जाते हैं तो उनके अवसर बन सकते हैं इस मैच पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप यूं समझ लीजिए नंबर 11 तक बैटिंग करती है, तो इसलिए बैटिंग की कोई कमी है नहीं। पिच में भले ही थोड़ी बहुत दुश्वारी हो कि वो धीमी है, नीची रहती है, लेकिन जिस तरह से स्टंप्स को अटैक किया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने, कंटिन्यूसली स्टंप्स को प्ले में रखा और बैटर को बाध्य किया कि वो सावधानी से खेलें, और गति का बहुत ही चतुराई के साथ लगातार परिवर्तन करना, इस तरह से करना कि पकड़ में ना आ सके, और उससे मात खाई, इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्होंने उस पारी में, उसको बांध के रखा। 7.55 के औसत से 151 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए। जॉर्जिया वॉल और बेथ मूनी दोनों फॉर्म में है, और बेथ मूनी तो ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में भी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, तो उम्मीद ये की जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रकाश,
6: सो दैट्स व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड, बट यस, वन डस फील दिस गेम इज ऑस्ट्रेलियाज टू लूज। इंग्लैंड वन फील्स विल ऑलमोस्ट हैव टू बोल ऑस्ट्रेलिया आउट, आई डोंट थिंक दे कैन डिफेंड 20 ओवर्स एंड लिमिट द स्कोरिंग बिलो 151।
5: पिछले मैच में 61 रन बनाकर नाबाद रही थी बेथ मूनी, विकेट कीपर है, अच्छी कीपिंग की, और कम से कम दो एक

0: तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनका योगदान रहा। चार्ली डीन ऑफ स्पिनर वो बॉलिंग करने जा रही हैं, और जब नेट सिल्वरब्रंट नहीं थी तब उन्होंने कप्तानी भी की इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में, और ये अच्छा मैचअप है। दाएं हाथ की ऑफ स्पिनर, लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने, पहली गेंद को ओवर द टॉप खेल दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: That's a statement, Vineet. That's the way Australia play, right? Brilliant shot to start off.
0: Half volley on the off stump, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बैट का अच्छी बैकलिफ्ट, पूरा फॉलो थ्रू, अच्छी फ्लरिश, 4 रन। अगली गेंद बहुत खतरनाक ढंग से आई, गेंद ये और उंगली उठी, खतरनाक ढंग से गेंद मूव हो रही थी, हालांकि रेफरल लिया गया है, ऑन ग्राउंड निर्णय है आउट का, वो मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, वो मायने रखा जाएगा, और रेफरल लिया है जबकि 3 सेकंड शेष थे टाइमर पे। और वेस्ट इंडीज की जो अंपायर है जैकलीन, अब इशारा कर रही है हाथों से टीवी बनाकर कि टीवी अंपायर ये सुनिश्चित करे कि भाई ये निर्णय बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या वो आउट था या नहीं था। गेंद वास्तव में कुछ ऐसी अप्रत्याशित कर रही थी, चकवा खा गए थे बैटर, और बैट के दूर नजर आ रही है प्रकाश गेंद।
2: Yeah, very similar to the way that she got out against India, Vineet, if you remember. Struck on the back leg, and this will be close.
0: Kim Cotton, jabki leg stump ke bahar gend tippa khaye to out nahi diya ja sakta, aur aisa hi hua hai. Achha referral, aur umpire, itna varishth umpire hai ye, Jacqueline itni varishth hai. Kam se kam senior most umpire mein se ek hai. Anyway, the ball pitching outside the leg, और बच गए वहां पहले विकेट देने से ऑस्ट्रेलिया। बॉल सामना करेंगे अभी इस गेंद की, डीन की गेंद घूम रही है, खेला है बहुत विश्वास के साथ नहीं, लेकिन पहले ही पूरा मन बना लिया था उस स्ट्रोक को खेलेंगी, कमिट हो गई थी उस स्ट्रोक के लिए, और उसको बखूबी खेल भी दिया, आसानी के साथ 1 रन ले लिया, 5 रन जीतने के लिए बनाने, कुल मिलाकर 151 रन। मूनी और बॉल की जोड़ी मैदान पर है, ऑस्ट्रेलिया चाहे तो इत्मीनान से भी खेल सकती है क्योंकि आस्किंग रेट 7.5 के आसपास का है, 5 रन बगैर नुकसान के। अब मूनी के ही लिए डीन ने अपने को मोर्चे पर लगाया है क्योंकि बर्ट मूनी विकेट कीपर लेफ्ट हैंडर है, और ये अच्छा मैचअप है ऑफ स्पिनर डीन, जिन्होंने की काफ़ी विकेट लिए हैं, कुल मिला के चार्ली डीन अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में छाई रही है, 9 विकेट उनके खाते में इस मैच से पूर्व पहले ही है, टॉप 3 बॉलर्स में उनकी गिनती है। चार्ली डीन ये गेंद और उसमें सिंगल लेना चाहते थे, गेंद को वहीं पास में खेला था, कोई स्ट्रोक में टाइमिंग नहीं था, ज़्यादा दूर गेंद गई नहीं, मुश्किल से 5 गज के फासले पर गेंद जा रही थी, ये देखते हुए पलटकर अपने बॉलिंग मार्क पे वापस आ गई। ऑफ स्पिनर हैं, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही हैं लेफ्ट हैंडर को, इस बार क्रीज में जगह का परिवर्तन उन्होंने किया और फास्टर वन कुछ हड़बड़ा कर खेला, और आमदा है हर गेंद पर रन लेना चाहती हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इधर उधर प्लेस करके सिंगल स्ट्राइक रोटेट करके एक अवसर बनाती ही जा रही हैं, और बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई बैटिंग नजर आ रही है, और इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम थी, बैकफुट पे जाके खेला, हालांकि स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा टाइमिंग या और प्लेसमेंट नहीं था, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकलने की कोशिश थी, स्मिथ के हाथ में लगने के बाद गेंद छिटकी लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने उसको उठा लिया, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: In women's T20 international cricket, batters ranked 1 and 2 are the Australian openers, Beth Mooney and Georgia Vohl. They are the ones who've started things off to try and get Australia to their 7th T20 Women's World Cup title. Whether or not that will happen, we'll find out as Lauren Bell gets ready. She's one of England's rising stars. She comes into bowl to the left-handed Mooney. She's in, she bowls, Mooney comes down the wicket, looks to go over the offside, is beaten. The aggression from Australia up front, very visible, trying to put the England bowlers off, not letting them settle into a line and a length. How will England respond? That is the key question. Good delivery, just back of a length. She made some room, did Mooney, looking to drive through the offside expansively. Didn't make any contact. Lucky didn't take an edge. Nice bouncy run up to the wicket. Tall figure of Lauren Bell bowls on the pads. Follows Beth Mooney. A shy at the now striker's end. If she'd struck, Georgia Vole might have been short of her ground. But as it turned out, Lauren Bell's throw was off target. Excitement early on in this Australian chase. The two batters, like two cats on a hot tin roof, want to run off every ball. She was a goner, was Georgia. If that ball had hit the stumps, anguish on the face of Lauren Bell. She knew she had a chance there. In comes Bell again. Two dot balls to start things off. Balls to Mooney. No timing, but she'll get that ball away just in front of short cover. They'll pick up a single. Seven without loss. Alice Capsey there charging in jersey number 28. And a run to Mooney. She goes to two. Vole is on five. Australia, seven without loss. Chasing 151, which I think everybody agrees, at least statistically speaking, is below par. Conversations between the England captain and the bowler now settles. And Mooney waits as Georgia Vole settles the right-hander. And Bell comes in, balls wide outside the off stump. And the ball's been deflected off the gloves, running down towards the third boundary for four runs. By
1: ye laga abha ka choka.
2: Waiting for the umpire to signal to see whether there was anything on it, whether it's a leg bye or whatever. Four runs nevertheless. No ball to boot because it was outside the tram line, the guiding return crease, and so that is not on the playing surface, which means it's a no ball and a free hit, just what Georgia Vole would have looked for. The batter moved to the offside, but not sufficiently, and in any case, anything that pitches outside the cut surface on the return crease is a no ball. Lauren Bell was thrown away by that movement, comes in and bowls now, and Vole pulls handsomely. Question is, did it go all the way or did it drop inside the boundary? Looks like one bounce four and Australia's innings gaining momentum.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: Now scorer Bhatti very keen to tell me that this was the 1,000th boundary in the T20 World Cup. Thank you. And 1,000 fours, if that means anything. I think it does to those who are statistically minded. But 16 without loss now. Australia setting the tone for this run chase. Here's Bell again. Comes in and bowls. Down the leg side, will be called wide, I am certain. We'll wait for the umpire's signal to confirm. It is 17 now without loss. Australia creating panic among the England bowlers who haven't been able to settle down. Lauren Bell bowling a no ball. Not for the front foot, but for direction. As Vole waits now for the fifth ball. This is an extended over, this one. And she's pulled it on. George Vole has dragged this one from outside the off stump. Inside edge, smiles on Charlie Dean as well as Lauren Bell's faces. And that is the first wicket. England will need plenty more of that. 17 for one. Vineet.
0: Zarurat nahi thi, lekin jaisa ki aapne kaha ki aamada thi har gend pe bada stroke. या रन लेने की और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. आड़े बैट से खेलने की कोशिश, अंदरूनी सिरा लगा, स्टंप से जाके टकरा गई. बेल युवा हैं, अभी 25 बरस की हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है नहीं. हड़बड़ा गई थी जिस तरह से उनके ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बैटर, और उसकी वजह से उनकी लाइन बार बार वो बदल रही थी, लेंथ भी बिगड़ी. शॉर्ट गेंद ये देखते हुए कि दो फील्डर बाहर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पे कोई है नहीं, शॉर्ट गेंद की और पुल कर दी गई. और एक गेंद तो उनकी पिच से बाहर, जैसा कि प्रकाश ने बताया, टिप्पा खाया. और इसलिए क्योंकि पिच के बाहर टिप्पा खाया वो नो बॉल दी गई थी, लेकिन अच्छी वापसी की है, एक विकेट मिल गया है, ये महत्वपूर्ण है। अब शिकंजा कसा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगा था कि दोनों छोर से ताबड़तोड़ बैटिंग करने का मन बनाकर मैदान पर उतरा था बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, और कुछ असर नजर भी आया इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर। वो हड़बड़ाकर इधर उधर गेंद करते रहे, लेंथ भी चूके। मेलिनी काफ़ी अच्छी कप्तानी करती रही हैं पिछली पारी में। इस बीच ये गेंद और इसको सीधा ड्राइव कर दिया, उस ओर कोई फील्डर है ही नहीं। चार रन स्ट्रेट ड्राइव, फोर रन्स।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बहुत ही इत्मीनान के साथ 21 रन एक विकेट पर दूसरा ओवर भी समाप्त हो गया।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: दिलचस्प क्रिकेट, इंग्लैंड चाहेगा झोली में एक विकेट और आ जाए, और ऑस्ट्रेलिया अब दोबारा सोच में लगा होगा कि क्या जिस तरह से शुरुआत की थी उसको बदल कर कुछ धैर्य से काम लिया जाए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर उनके सामने है नहीं, जीतने के लिए 151 रन बनाने हैं, बहुत बैटिंग उनके पास है। बेल का निश्चित रूप से हौसला बढ़ेगा। इस बीच गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, गेंद को अपना संतुलन नीचे करते हुए फिर खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और वो पूरा भी हो जाएगा। 23 रन एक विकेट पर। स्मिथ बॉलिंग में परिवर्तन, चार्ली डीन की जगह लिंस स्मिथ आई हैं, बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं। ये मैचअप्स का ज़माना है जनाब, तो जिस तरीके का बैटर है, अगर आपको गेंद बैटर से अलग जा रही है तो खेलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिक्कत होती है, तो ऐसे ही बॉलर को लगाया जाता है जो बैटर से दूर गेंद को निकाले। कुछ गेंदें बिल्कुल ग्रिप हो जाती हैं, नीची भी रहती हैं, और ये बात सही है कि गेंद वाइड थी, लेकिन उन दो कारणों की वजह से वो बोल्ड आउट हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग करने का प्रयास तो था, कलाबाजी खाई, लेकिन रोक नहीं सकेंगी ये चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मिथ ने कुछ तेज गेंद की थी, ऑफ स्टंप की सीध पे आती हुई गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के क्षेत्र की तरफ गई, पूरी लंबाई में डाइव लगाई, लगभग गेंद तक पहुंच गई थी, एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन गेंद रुकी नहीं और बाउंड्री पार हो गई। अगली गेंद में स्टंप पर अटैक कर रही है स्मिथ। स्मिथ अच्छी लगातार, कई बार उन्होंने नई गेंद का भी इस्तेमाल किया है और यही सही नई रणनीति है इंग्लैंड की, वो भी लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था, एक एक ओवर के बाद भी बॉलर को हटाया गया। थोड़ी सी शॉट नीची थी, पुल करने में थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन फील्डर है वहां पर, वो उसको उठा लेंगे आसानी के साथ और केवल एक रन मिलेगा। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। डैनी थी वहाँ पर जो फील्ड कर रही थी, बेथ मूनी। 65 रन की आवश्यकता है 1000 वर्ल्ड कप में रन पूरे करने के लिए। एलिस पेरी का क्या कहें, महान क्रिकेटर, इनको पिछले 50 साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। या तो आप एज ए बैटर ही उनको शामिल कर लें या एज ए बॉलर, दोनों कामों को भरपूर अंजाम देती हैं। अगली गेंद को ओवर द टॉप खेला, फील्डर मौजूद है, केवल एक रन मिलेगा। स्ट्रोक के साथ दौड़ते हुए उस एक रन को पूरा किया। तो कुछ लोग उनको गैरी सोबर्स ऑफ विमेन्स क्रिकेट बुलाते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन एक विकेट पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: वेरी एविडेंटली ऑस्ट्रेलिया लुकिंग टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले, दे आर गोइंग जस्ट अंडर 10 रन्स इन ओवर इन दीस 3 ओवर्स सो फार, 29 फॉर 1। George, you have all the batter out, dragging one on. Molyneux waits. It's Phoebe Litchfield who's come in. I don't know why we've been saying Molyneux since the new batter came in. One more to the total. Tucked away around the corner. And total.

0: इतनी तेजी के साथ वो करती हैं, डीन वापस बॉलिंग करने के लिए आ गई हैं, उनकी पहली गेंद को ड्राइव किया। इंग्लैंड भी स्टंप्स को अटैक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरह, यथासंभव लगातार स्टंप्स की सीध में गेंद करने की कोशिश है, लेकिन युवा लॉरेन बेल कुछ ज़्यादा वाइड इधर उधर की गेंदें करती रही हैं। अगली गेंद को स्वीप कर दिया, उस ओर फील्डर अब पहुंच रहा है, पहुंच से दूर, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के उन क्षेत्रों में ही स्ट्रोक खेल रहे हैं जिस ओर फील्डर दूर हैं या हैं ही नहीं। अब वैसे भी दो ही हैं बाउंड्री लाइन के पास, एक मिड विकेट की तरफ हटकर स्क्वायर फील्डर है लेग साइड में, और एक कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, और ये पावर प्ले का फायदा वो उठा रहे हैं। अभी इसमें गेंदे शेष हैं, एज ऑफ द क्रीज से ये गेंद की कट करने का अंदाज, लेकिन फील्डर दायरे के अंदर है, फाइन लेग की बाई तरफ लेकिन दायरे के अंदर, 25 गज के, कोई रन नहीं मिलेगा। दो डॉट बॉल, एक चौका, पांचवा ओवर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बनाने हैं 151 रन, 49 रन एक विकेट पर। अब वो लेग साइड का फील्डर अब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कर दिया गया है, अगली गेंद को एक कदम बाहर निकाला, हाफ वॉली पर उठाकर खेला, और इस बार क्या 6 रन मिल जाएंगे, 6 रन।
1: ये लगा आभा का छक्का,
0: और इस छक्के के साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ, पहले 50 रन ऑस्ट्रेलिया की पारी के, बहुत तेजी के साथ आए हैं। फीबी लिचफील्ड एक अर्धशतक पहले ही बना चुकी हैं इस टूर्नामेंट में, हालांकि बहुत सारे मैचेस में वो नहीं खेली गई हैं, खिलाई गई हैं, लेकिन हौसले, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा नहीं है, इस तरीके के कुछ स्ट्रोक लगे तो फिर चेहरे लटकते और बुझते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड को हौसला रखना पड़ेगा, 11 रन के ऊपर से ज़्यादा का इस समय रन रेट है, 11.79। अगली गेंद, और बहुत लेट खेली, अंतिम समय तक क्रीज की गहराई में लगभग पीछे चली गई थी और लगभग स्टंप्स के करीब पहुंच गई थी, और गेंद चली ही तो गई थी स्टंप्स के पास, इस तरह से वो जो स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके बाहर निकल आना इस पिच पर, मानना पड़ेगा आत्मबल, आत्मविश्वास, संकल्प, तीनों चारों को, और नजरिया है क्रिकेट खेलने का, अपना अपना नजरिया, एक मिड विकेट और ऑफ साइड में कवर पॉइंट बाउंड्री पर दो खिलाड़ी बाहर है, बाकी सब दायरे के अंदर। धीमी गेंद, कोण बनाती हुई, एंगल डिलीवरी मिडिल स्टंप पर, उसको रक्षात्मक रूप से पुश भर कर दिया, आके दबा भर दिया, बैट से टकराने दिया, पांचवा ओवर समाप्त हो गया 55 रन एक विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: ऑस्ट्रेलिया लुक टू बी इन अ रियल हरी हियर विनीत, मे बी देव गॉट एन अर्ली फ्लाइट, आई डोंट नो, 55-1 डोमिनेटिंग इंग्लैंड्स बॉलर्स, द लॉस ऑफ जॉर्जिया वॉल नॉट putting any change whatsoever to their approach, which has been dominating. Lindsay Smith continues, pulled away towards wide-ish long on. They'll take one, and the total will move up to 56. Mooney goes to 23, Litchfield on 16, and long faces in the England crowd. There are three players in this England team who have already gone through the pain of losing to Australia in a World Cup final. One of them is Heather Knight, Nat Siver Brunt, and Heather and Danny Wyatt. This one struck her on the pad. There's a big appeal, but umpire Rati is unmoved. I think the ball probably pitching outside the line of leg stump. Looking for the reverse sweep, there was Phoebe Litchfield, making no contact. Lindsay Smith bowling and varying her pace. That's what I think England haven't done. Lauren Bell in particular has bowled pretty much at a standard pace. Smith bowls again. This one's wristily pushed away on the offside. This is turning out to be a decent start to the over. Just the one run, ensuring that they try and keep the Australian batters at bay. Three balls of the power play to come. Here's Smith bowls again, nicely holding her length back a little bit and defeating the batter in the air, but able to adjust was Litchfield, pushing it away towards wide-ish mid-on for a single.

0: 57 for one. Litchfield 17, Mooney on 23. Two balls of the power play to come, after which England will have some relief in terms of placing a couple of fielders, and I suspect we'll see Eccleston into the attack immediately after that. Short ball pulled away on the onside. There could be runs. Four runs.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Just a little bit of length, back and short of a length, and pulled away authoritatively by Beth Mooney. What a cricketer. In complete control and really timing it beautifully. 61 now for one. And the last ball of the power play is now coming up. Australia showing how to play the power play. And they've knocked off 61 of the target already. Nicely worked away on the onside for a single. We'll keep the strike. Six overs bowled. Power play complete. 61 for one. Australia in the driver's seat.
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
5: जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
7: तो 6 ओवर पूरे हुए, ड्रिंक्स मैदान पर है, खेल रुका हुआ है, खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं. चार खिलाड़ी मात्र खोए थे इंग्लैंड ने, लेकिन रन केवल 150 बना पाए थे. ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में इस पिच पे दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं. हौसला बुलंद है उनका और वो आक्रामक शैली से खेल रहे हैं. कई बार अपने स्ट्रोक्स को चेंज करना पड़ा है, चेक करना पड़ा है. क्रीज छोड़ के बाहर भी निकली हैं खिलाड़ी. बैटर्स जो इस तरह से खेलना चाहते हैं वैसे खेल नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ताबड़तोड़ रन बना दिए. इंग्लैंड ने बनाए थे 39 रन 2 विकेट पर पावर प्ले में, और ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए हैं 1 विकेट पर. इतना फ़र्क है. और कहा जाता था कि बैटिंग पहले करें या फील्डिंग पहले करें, क्या सही रहेगा फाइनल्स में. और पहले बैटिंग करने का जब अवसर मिला तो पिच की दुश्वारियों को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग चेंजेस, गति में परिवर्तन और स्टंप्स को अटैक करने का वो जो उनकी रणनीति थी, उसका मुकाबला ठीक से इंग्लैंड कर नहीं सकी. अपनी इनिंग्स को पेस नहीं कर पाई, क्योंकि प्रकाश केवल 4 विकेट ही गिरे और उसके बाद भी वो पेस को फोर्स नहीं कर पाए. अब यहाँ से ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन के लिए अतिरिक्त रात का समय जुगाड़ना चाहेंगी और इसीलिए कुछ तेज़ी से खेल रही हैं. स्मरण रहे कि इंग्लैंड में 9:30 बजे से पहले दिन सूर्यास्त नहीं होता, और इसीलिए पहले वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ तो 60 ओवर का खेल हुआ करता था. तो सूर्यास्त का समय लगभग 9:30 के आसपास का है लंदन में, जहां के 2 प्रसिद्ध मैदान हैं. ओवल में दोनों सेमीफाइनल हुए और लॉर्ड्स में इस समय फाइनल चल रहा है. 151 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और 62 रन वो पहले ही बना चुका है 6 ओवर में. बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है. क्या कर सकता है इंग्लैंड यहां से? और सो एकलस्टन की बात कर रहे थे प्रकाश वाकनकर. एकलस्टन ने वो एक शानदार कैच वोल्फर्ट का पकड़ा था जब 43 रन बन चुके थे, को विकेट नहीं गिरा था, अपने कद का फ़ायदा उठाकर. उनकी बॉलिंग भी बहुत कारगर साबित हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से रन बनाने पे आमदा हैं ऑस्ट्रेलिया, आज अग्नि परीक्षा होगी. बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन कैंप डीन की जगह लगाई गई, चार्ली डीन की जगह कैंप आई हैं और वो बॉलिंग करेंगे. बैटिंग अच्छी की उन्होंने आज, और देखें क्या करती हैं. लेफ्ट हैंडर मूनी सामने हैं उनके, और खेला है गेंद, स्ट्रोक को चेक किया, गेंद हवा में है, लेकिन उस ओर फील्डर है कहाँ, दूर से आना पड़ेगा उठाने के लिए. तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही हैं, और रन उन 2 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 64 रन 1 विकेट पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर. नेट शिवन ब्रंट नॉट आउट रही 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर, और फ्रेया कैंप ने 28 गेंदों पर 44 रन बनाए. एकमात्र बैटर जिन्होंने कुछ हौसला दिखाया. कैंप चली, उनकी ये गेंद स्टंप्स के पास से की थी, कलाइयों को ऊपर उठाकर, कोहनी को ऊपर उठाकर मोड़ा भर जगह निकाली और तेज़ी से दौड़कर दोनों बैटर ने अपने सिरे बदल लिए.

0: लेकिन देखिए नजरिए का कितना फर्क पड़ता है, आपकी सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं वो फर्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का अपना अंदाज है खेल के मैदान पर, चाहे वो क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो। लगातार स्टंप्स के पास आकर गेंद कर रही है, बॉटम एज लगी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, विकेट कीपर के पीछे गेंद गई है, बहुत ही फाइन, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: वॉवल सीम से की थी, गेंद की रफ्तार कम की थी, लेकिन इतनी वाइड थी और इतनी नीचे रह रही थी और उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं थी। अपने बैट को दबाया उस वाइड गेंद पर, सिरा लगा, बॉटम एज, निचला हिस्सा जिसको कहा जाता है, और उसको लगने के बाद लुढ़कती हुई गेंद चली गई लॉर्ड्स के उस ओर जहाँ की वो मीडिया सेंटर है। कैंप चली, 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर में, लगातार धीमी गेंदें कर रही हैं। मिडल और लेग स्टंप की इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्शन में कितने रन आज इस पिच पर दोनों ही टीमों ने बनाए हैं। मूनी और लिचफील्ड की ये जोड़ी है, अब तक केवल 1 विकेट गिरा है। लिचफील्ड ने रन बनाए हैं और इस पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 50 किया था इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में। गेंद की लंबाई कुछ ज़्यादा रख रहे हैं, कोई स्विंग तो है नहीं, नॉ स्विंग के लिए कोई ऐसी रफ्तार भी है। इस बार गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अपने आप को व्यवस्थित किया, कलाइयों को मोड़ दिया, फुर्ती में नजर आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ताबड़तोड़ आनंद फानंद में इस मैच को खत्म कर देना चाहती है, ओवर समाप्त हो गया।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: ऑस्ट्रेलिया गोइंग अलोंग एट लिटिल ओवर 10 रन्स इन ओवर, 72 फॉर 1, एंड हियर इज एकलस्टन। First ball worked away on the onside. They've taken one. Think of the second and change their mind. Litchfield goes to 20. Australia 73 for 1 now. Required run rate just about a run a ball. And if Australia continue like this, unless there is a mini collapse and England can strike now and not just one wicket, I think England need a couple to try and come back into this game. Can Eccleston provide that? Left arm over. Experienced bowler, tossed up, turned out towards the wide-ish mid-on region for a single by Beth Mooney. More fielders in the deep now permitted, of course. 4 fielders in the ring, 5 will be in the deep. Capsey is out at long on. Eccleston bowls and driven on the offside, but straight to Nat Siva-Brunt at short mid-wicket. There is no run. 74 for 1 in the 7th over. Chasing 151 to notch up their 7th title. Australia this time making some room, pulled away, fine, swept beautifully. Initially I thought it hadn't been timed, but it was placed and timed well by Litchfield, and that gave her 4 more runs.
1: Ye laga abha ka choka.
6: Swept very well indeed. Proactive movement. In fact, that's been a feature of the Australian batting so far, has been the proactive footwork of the Australian batters, achieving angles that otherwise wouldn't be available. And England facing annihilation here. This one's inside out, driven out towards the deep cover boundary. She was looking to go a little bit straighter over extra cover, the ball taking the outside part of the bat, and as a result, just a single. 79 for 1. Litchfield 25, Mooney 37, and Australia now require less than a run a ball. And we're not even completed halfway stage yet. Pushed away on the offside nicely by Mooney, in control. Very sensible cricket. 8 overs complete, 80 for 1.

0: ऊपर।
1: ओवर समाप्त हुआ है आठवां, और किसी भी तरीके का इस अनुभवी बॉलर ने गति का परिवर्तन नहीं लिया अपने इस पहले ओवर में। एकलस्टर ने 51-52-53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही बॉलिंग की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: अब बचे हुए रन केवल 5.92 के औसत से बनाने, यानी कि 6 से भी कम रन बचे हुए ओवर्स में उस गति से ही बनाने शेष हैं, क्योंकि पहले ही 10 के औसत से वो खेल रही हैं। पहली गेंद और उसको लगभग पुल के अंदाज में बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया, एक रन मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। 81 रन 1 विकेट पर, टारगेट 151 का है। क्रिकेट से संबंधित हर व्यक्ति आपको इस समय लॉर्ड्स में दिख जाएगा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा फैन, सब लॉर्ड्स की ओर ही तो आ गए हैं। कितना बड़ा अवसर है ये जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर। कंधे का इस्तेमाल किया पटका गेंद को गिब्सन ने। गिब्सन से लगातार बॉलिंग कराई, नई गेंद का इस्तेमाल भी किया है गिब्सन ने, आज थोड़ा देर से तलब किया है। अब 70 गेंदों पर 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। लिचफील्ड 25-19 गेंदों पर और मुनी ने 39 रन बनाए 26 गेंदों पर। यह 9वां ओवर है जिसकी 3री गेंद आ रही है। काफी स्टम्प छोड़कर लेग स्टम्प की गार्ड लेकर खेल रही हैं, सीधा ड्राइव किया, ऐसा एक बार को लगा कि टाइम नहीं कर पाई हैं। फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब डाइव लगाई, उनसे रुके कि नहीं, 4 रन्स।
7: ये लगा आभा का चौका।
1: जैसे अब तो ये एक तरफा मुकाबला हो गया है, जैसा चाह रही हैं वैसा खेल ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स, और इसको पहले ही समझकर अपने आप को पोजीशन किया और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए 1 रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब 1 विकेट के नुकसान पर। सोफी डिवाइन, टूहू और वरिष्ठ खिलाड़ी कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद, शॉट तो थी लेकिन स्टंप से इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी, अपने पैर फैलाकर जगह निकाली उस स्ट्रोक के लिए और फिर खेला उसको ऑफ साइड में। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी, 56। आप समझ सकते हैं एक बाएं हाथ का स्पिनर 53 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था, और ये मीडियम पेसर अगर आप देखें तो ये बॉलिंग कर रही है 56 की स्पीड से। घूम कर खेला तो रन लेने के लिए बाहर निकल आई, क्या इसमें रन आउट का अवसर होगा? अंपायर से पूछा जा रहा है। अंपायर आमतौर पर इस टूर्नामेंट में हमने देखा है प्रकाश, निर्णय ले लेते हैं तुरंत और बता देती हैं वहीं पर कि आउट है या नहीं है, तीसरे अंपायर के पास नहीं भेजती हैं और लगता है कि विकेट मिल गया है वहां पर। हालांकि निश्चित रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि सही है कि या नहीं है, अंपायर का रिव्यू इस समय चल रहा है कि ये रन आउट है या नहीं है। फिसलाया, बैट को आगे बढ़ाया, अच्छी तकनीक, ठीक उस समय जब बैट आगे सरक रहा था, क्या ऊपर हवा में उठा है, क्या ग्लव से वो जो हटाया था वहां पर बेल्स को जब हटाया था तब तक बैट अंदर पहुंच गया था। मुझे लगता है बैटर के पास एक अवसर बन गया है क्योंकि बैट ऊपर भी नहीं उठा है और जब वो हटाया था तो भाई तकनीक जब आप अच्छी इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी पहुंच में बैट आगे बढ़ा दिया और बिल्कुल नीचे घास पर चिपकाते हुए पिच के ऊपर रखते हुए उसको फिसला दिया, उनकी पहुंच बढ़ गई और इसलिए विकेट कीपर के पास जो एक अवसर था वो जाया होता रहा। हालांकि अभी प्रतीक्षा की जा रही है औपचारिक निर्णय की।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 87 for 1, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now, and just watching that replay, it's very close thing, short again from 88 for 1. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. 4 runs.
7: Ye laga abha ka choka.
0: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keep her standing up. But that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for one, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away. And that will be a one bounce four at high long on.
7: Ye laga, abha ka choka.
0: Back-to-back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time on the stumps, not able to beat the fielder at mid-on. And the total stays 96 for 1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a seventh title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for one. Litchfield 39 and Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork, intent very obvious, not afraid, brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for 1.
2: What's lie ho na?
3: Nahi, mujhe laga tum laye ho.
2: Tum ho hi bhulakkad.
3: Bhool bas itni hai ki tumse shaadi kar li.
4: Ladiye mat, janiye abha ke bare mein. यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगे या नहीं, सवाल यह है कि कितनी जल्दी जीतेंगे। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है, कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है
5: ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाईं तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है। 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है सातवीं बार T20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी, अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहाँ पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा और ये 6 रन।
7: ये लगा आभा का छक्का।
5: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5, 11 ओवर समाप्त हो गए 107 एक विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission, and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot inside out from Beth Mooney, takes her to 48, 4 more runs.
7: ये लगा आभा का चौका।
0: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly, and England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board, 111 for 1. So most fours in this World Cup. Wyatt Hodge 42, Smriti Mandhana 30, and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls, and a lovely ball. The arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian batter. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid-wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need much more than that, do England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls, Mooney pushes on the offside, they go off for a single, two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for one now. That was Danny Wyatt-Hodge. 112 for one. On the offside, it was pushed away. And I think that was Freya Kemp and Wyatt-Hodge who ran into each other. 1-1, 2 for 1. The fifth ball of the 12th over. Eccleston bowled and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership. And Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side. Will be called wide. We'll wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for one now. And the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far with one ball to come. Reverse sweep attempted. And once again, she misses it. She holds her head, does Eccleston. Wondering how she hasn't got through. 12 overs complete. 113 for one.
6: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: तो धीरे धीरे मंजिल मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एकलस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उस पर बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला। 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के। दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर, अच्छा तालमेल, सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके साथ ही मूर्दी का अर्धशतक पूरा हुआ केवल 38 गेंदों पर, 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मूनी का तीसरा अर्धशतक है। मूनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए होम जी। तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैत मूनी 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा। अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए। हालांकि शैली शुरू से ही रही है, मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई, बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है।
8: ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी। अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे। कमाल की साझेदारी। ओ बोल्ड कर दिया। चार्ली डीन ने विकेट ले ही तो लिया और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
0: Forty-eight is what Phoebe Litchfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless, of course, the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vall dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the Australian, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here. Young Phoebe Litchfield, maybe that ball just keeping a little bit low as well. But aiming at the stumps and getting the reward was Charlie Dean. Kemp Bowles worked away nicely on the onside. Will it go all the way? Yes, it looks like it has. I think it's Capsey who dives over the ball. And 4 more runs to Beth Mooney and to Australia.
7: Ye laga, abha ka choka.
0: 121 for 2 now. 54 to Beth Mooney. Just worked the ball away. And a pedestrian effort really in the deep. And 121 for 2 is the Australian total now. 16 fours and 2 sixes. Inside edge, fortuitous runs this time off the bat of Beth Mooney. Fortune favours the brave, they say. That's exactly what happened here. Another boundary, 4 more.
7: Ye laga, abha ka choka.
0: Mooney moves to 58, Australia to 125. Now, really, only the formalities remain. 26 more runs needed. And Australia will be keeping whatever it is, whatever beverage it is that they choose to have after this game, on ice and getting it ready. 26 runs required. 125 for 2. Making room again. This one was played a little bit in the air, but not carrying to the bowler, Freya Kemp. And so there's no damage done. Ellis Perry's helmet has been the topic of significant discussion. We've seen the national county cap of many a player being worn out over the years, and they're very touchy about it, and they look after it well, but they also keep it with them. Now, looking at the rebound of the bowler's fingers is the third umpire, Ellis Perry. Doesn't look like she was outside the crease. We're just trying to figure out whether the ball actually hit the bowler's fingers on its way or not. My eyesight certainly not as good as Vineet's. Maybe he can tell us whether he thinks the ball's hit the finger of Freya Kemp or not.
8: बहुत नजदीक तो थी उंगलियों के पास वो गेंद, लेकिन आजकल तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बता पाती है। कितनी ही बार उसके रिप्लेस देखने पड़ते हैं, लेकिन मामला नजदीक अवश्य है।
5: अच्छा प्रयास था।
0: मे बी दे नीड टू स्टार्ट पुटिंग अप।

0: in the cricket ball, like the football now,
1: yeah,
0: to decide whether or not the fielders touched it. Who knows what technology will do next, Vineet? But at the moment, the umpire now ruled there's no damage done. 125 for two. 14th over in progress. Perry yet to face a ball. Beth Mooney on 58. And Freya Kemp waits. And now the umpire has gone up and signaled for a television replay. What was all of that earlier? I'm not sure. Maybe they just realized that we've got so much time in this game that we might as well get a TV replay and see what happens. We saw about 20 images of that, whether or not the umpire had, the bowler had touched the ball or not. Ellis Perry having a word there with the umpire. Right, now they're going to use ultra edge on the finger.
2: Oh God!
0: Which is not something I have seen before, but it's a fair call. I mean, you have the technology, you might as well use it. And ultra edge certainly looks clean. And what many of us felt earlier now being confirmed, not out. It almost is like take no risks. Doesn't matter if the game gets held up. 125 for two. Kemp back into the attack. Bowls to Mooney, who lofts this over the head of mid-off. And four more runs.
3: Ye laga, abha ka choka.
0: Not a very nice thing to say, Vineet, but I'm going to say that I think England also are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality. Now here's Kemp in again to Mooney, who's moved to 62. Pulls this one round, doesn't get hold of it. Off the pad, over complete. 14 gone, 129 for two.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा?
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार है। न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है। हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता। बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है। 129 दो विकेट पर, ओवर कितने हुए हैं भाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है, इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नजर आ रही। तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ, इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुंची। कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो, और वो भी नॉकआउट स्टेज में, तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी, कुछ नीची है, और अभी भी है। ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने, केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7-14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मुनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज, तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी। लेकिन डीन, चार्ली डीन ऑफ स्पिनर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नजर नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सिरे से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दो अवसर गंवा देने के बाद पिछले सालों में अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है। 34 गेंदे 21 रन, स्टंप्स छोड़कर अलग खड़ी हो गई और फिर उसको ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में थी फील्डर के पास और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहां पर गेंद को जब ड्राइव किया था तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे कोई कैच की संभावना हो सकती है, लेकिन गेंद को उठाकर रन आउट के लिए थ्रो किया क्योंकि कुछ विलंब के साथ बैटर वहां पहुंच रही थी। काफी बागें निकल गई थी नॉन स्ट्राइकिंग छोर से अगली गेंद और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ऐसे में ही स्टंपिंग्स होती हैं, वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, कोई संपर्क नहीं बैट से और अब केवल 20 रन चाहिए और एक अतिरिक्त गेंद और करनी पड़ेगी। इनामी राशि 83 करोड़ से भी अधिक है और जीतने वाली टीम को 22 करोड़ से अधिक मिलेंगे, हारने वाली को 11 करोड़ से कुछ ज्यादा। लगातार स्ट्रोक के लिए जगह बना रही हैं और स्क्वायर बैट से खेलने की कोशिश कर रही हैं और हर गेंद पे सिंगल दौड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। फासला कम हो रहा है, 3.56 का औसत चाहिए। 10 चौके लगा चुके हैं मुनी अब तक, लिशफील्ड ने 6 लगाए फिर आउट हो गई, हर शतक पूरा नहीं कर सकी। इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था शिव ब्रंट ने 5 लगाए थे। डीन की ये अंतिम गेंद, ऊंचा स्ट्रोक खेला ओवर द टॉप फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका
2: और इसके साथ ही ओवर भी पूरा हुआ। यह गेंद शेष है, एक गेंद शेष है। देखिए हौसले की तारीफ करनी होगी, किस तरह से बिल्कुल सुरक्षित स्ट्रोक बॉलर के छक्के छोड़ा दे, ऐसी स्ट्रोक प्ले आपको देखने को मिलेगी और कोई आसान पिच नहीं है, रनों से भरा हुआ पूरा अगर ये पिच हो तो आप समझ सकते हैं इस तरह के स्ट्रोक को। 2-3 स्ट्रोक तो ऑन द राइज खेल के दिखा दिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस पिच पर, फिर उस अंतिम गेंद पर एक रन दौड़ रही हैं और स्कोर को पहुंचा रही हैं 137 दो विकेट पर।
0: Ellis Perry on 6 will retain the strike with that single. Beth Mooney is on 63. And now 14 runs is all that Australia need. This has turned out to be a very one-sided final. I must confess this was a fear in some people's minds. And that is why one felt that England had to get an over-par score, which would have meant somewhere in the region of 180, if not more. India's 171 at the Oval in the semi-final turned out to be a very comfortable chase in the end for Australia, in spite of losing a couple of early wickets. So 150 was never going to challenge. And the question that will be asked now is a 53-ball 58 by the England captain, with people like Danny Gibson still left, not even getting a chance to bat. In some ways, very similar to the criticism that Indian batters faced in that semi-final. Eccleston into what is her third over, first ball off the pad, ricocheting and taken by the keeper. Ellis Perry remains on 6. Mooney on 63, very clearly the dominant player throughout this Australian batting innings. Eccleston bowls again, this time Perry works it away nicely on the onside, trots across for a single, fielder comes in from the deep. 138 now for 2. We're in the 16th over. 13 runs required. It'll be interesting if Australia were ever asked which was the toughest match of the tournament they played. they might well come back and say it was the semi-final against India, given the way they've dominated this final. Here's Eccleston bowls again, making some room. Mooney cuts, but straight to the fielder this time. So there will be no run. 138 for two. Heather Knight, Nat Siverbrunt and Danny Wyatt-Hodge will relive the experience of losing to Australia in the final. Worked away on the onside this time by Mooney. She'll look for the second run, but she won't get it. So just one more to the total. 139 for two. Mooney up to 64 now. 12 runs. So two hits away. Will Australia want to do it that way? Or will Australia take it the way they have all the way through? Very professional, taking their time and just doing it ruthlessly, as they always do when they get a hand on the trophy. Two balls to come in the 16th. Eccleston bowls and Perry drives. Little bit of a misfield at mid-on. Will not result in an extra run, just the one run. 140 for two now. 11 runs required. And the last ball of the 16th coming up from Eccleston. Ellis Perry wears the helmet, which is faded to a light green. Eccleston bowls, and this one struck her on the pad. This could be close. The umpire is not moved. There's a big appeal from Eccleston. Amy Jones having a word. They're thinking about it. Well, Nat Siverbrunt has gone upstairs, and why not? Because they've got nothing to lose at this stage, taking a review. 140 for two it is, as the third umpire now will review where things have gone. And we'll wait and watch. Here's the replay. This could be tight, Vineet. It looks like it might well be umpire's call if the ball hasn't touched the bat. I think Mooney knows that she hasn't hit the ball. The expression on her face seems to suggest that. The replay is on. And we have to wait and see what the umpire's decision is going to be. 140 for two. Will she go to ultra edge? Probably will.
2: पहले अंपायर को यही चेक करना है कि बैट से लगी है या नहीं लगी है, और उसी को उस इस समय अलग अलग एंगल से देखकर प्रयास कर रही हैं जानने का. और अल्ट्रा एज देखी जाएगी कि क्योंकि बैट के काफ़ी करीब थी गेंद, स्प्लिट फ्रेम में भी ये तय नहीं हो पाया, और अल्ट्रा एज की प्रतीक्षा की जा रही है. कुछ समय लगता है ये देखने के लिए कि अगर एज है तो फिर LBW नहीं हो सकती, क्योंकि बैट पहले टकराया था. अपनी इनिंग्स को पेस करती इंग्लैंड, सबको अवसर भी नहीं मिला बैटिंग का. बैट के करीब गेंद आएगी अभी, और क्या उस पर डिविएशन है? ऐसा नहीं लगता कोई डिविएशन है. तब तक बैट पे पहुंच चुकी थी, तब अल्ट्रा में कोई डिविएशन नज़र आ रहा है तो बैट पे तो नहीं लगी. अब बॉल ट्रैकिंग पे दारोमदार है.
0: अंपायर्स कॉल कुड बी लाइकली बिकॉज दिस वाज फायर्ड इन बाय एकलस्टन. But she seemed very, very confident. Once the ball tracking comes on, we'll know. Everything running in slow motion, anticipation on everybody's face. And I think in their heart of hearts, everybody knows it's going to make no difference really to the result. The question is, will Mooney have to depart or will she continue? Three, four frames on our monitors here. Nat Siverbrunt, the England captain, Beth Mooney, the Australian batter against whom the appeal is, and the split frame of the third umpire's view. But this is taking far too long, as has often become the case now in international cricket. Technology, but quick decisions is not something that technology is delivering, one has to say, except when it comes to the new ball. Now this will tell us. It's pitching in line, one red, two reds, three reds. Means Beth Mooney has to depart. 16 overs have been completed. It's 140 for three.
2: अच्छा रेफरल लिया अंपायर ने, नॉट आउट दिया था, और ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही हो, क्योंकि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो बेथ मूनी खेल रही थी. बेहतरीन पारी, 49 गेंदों पे 64 रन, 10 चौकों की मदद से एकलस्टोन की गेंद पर LBW आउट हुई बेथ मूनी. और बहुत संभावना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच साबित होंगी. 140 पर ये तीसरा विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का, और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ.

0: एक तरफा हो गया मैच, लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना, इट गेट्स ऑन योर नर्व्स, इतना आसान नहीं होता। क्रिकेट के जानकार वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र आप पर होती है, ड्रेसिंग रूम ऊपर है, आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए। एशले गार्डनर क्या खिलाड़ी हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। स्मिथ बॉलिंग करेंगी, सामने है पैरी। पैरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है, तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं इस वर्ल्ड कप में, बॉलिंग नहीं की आज, मिडलर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था। अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है, हालांकि वो रेफरल में काफी समय जाया हुआ, गेंद काफी फुल लेंथ की थी। अगली गेंद, उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए, और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लौ जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिश ड्राइव, मिड ऑफ पर दायरे के अंदर वो कैच हुई।
2: Good catch by Eccleston there. Was travelling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
0: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। नो कैच एकलस्टन द्वारा, सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है, ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट, बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टोन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही है, डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
2: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत, आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टोन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है, क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है, किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
2: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ 2-dimensional इमेज, यू नेवर कैन गेट अ 3-dimensional इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम, इट कैनॉट लीड द गेम इन माई ओपिनियन, बट हु केयर्स।
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार

0: मिला है नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
1: सॉरी विनीत, यू नो इन द अर्लियर डेज बिफोर दैट रूल वाज अबॉलिश्ड देयर यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर। आई थिंक दैट वाज अ बेटर वे बिकॉज देन यू नीडेड कंक्लूसिव एविडेंस टू ओवरटर्न द अंपायर्स सॉफ्ट सिग्नल, बट दैट इज नो लॉन्गर द रूल।
0: और जब वो सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था, मार सुर्खियों में रही ये खबर कि सॉफ्ट सिग्नल की क्या जरूरत है, ऊपर भेज ही रहे हैं आप, तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, आईसीसी नियमों में बदलाव करती चली जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नजरिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 तीन विकेट पर।
1: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13, Ash Gardner is on 1, and of course that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield, Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority, and now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston who's going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. 146 for 3. 17 overs, lofted over, pulled back in. Dragged back in probably is a better way of putting it. Limits the scoring to 2. Gardner goes to 3 and the total now 148 for 3. 2 to tie, 3 to win. 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia and the celebration. Eccleston bowls swept. This one's running down to the boundary. This could be it. 4 runs and Australia have won. So...
2: ये लगा आभा का चौका।
1: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their 7th title is theirs.
0: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया। दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पर अटैक किया, धीमी गेंदें की, गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी। आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
3: प्लेयर ऑफ द मैच

0: right, so finally history is made, and as we always saying that this was England's ground, but now Australia has a stamp of it. Seventh time champion, Australia has won the World Cup 2026 ICC Women's, and this is actually a lovely moment for all the cricket lovers. This was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं. चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा ये, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं. बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को.
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ. देखिए, आपने मैच खत्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को ख़त्म कर दिया. तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180, आप सोचिए 180 रन होते तो यहाँ पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं.
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूंगा. मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई.
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी.
1: ओके, इंडिया. ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही थी.
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही
1: थी. नॉट बैड.
0: एंड चेतन, एक्चुअली I was also talking to you when we were sitting in the green room. When Australia won the toss, if hypothetically, if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely, they would have. जैसे उनकी बल्लेबाजी 190 रन तो जरूर बनते हैं, जो 186 की बार बार बात कर रहे थे ना गीतांजलि, वो आज रिकॉर्ड तोड़ते, because they got a power.
0: Yes.
2: And सबसे important है, मैं ये बिलीव कर रहा था कि इंग्लैंड के स्पिनर्स काफी हद तक कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर. मुझे नहीं लगता आज, ठीक है उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन रन्स भी ठीक ठाक थे. मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं. उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे.
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूंगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी तोड़े से भाई टूटे ना.
4: जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मोमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं. और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मोमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा गया लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा. और फीबी लिचफील्ड की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मोमेंट था, और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है. बेथ मुनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता.
0: श्योर, हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी. मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे. नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085. अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे, 011 लगाना बहुत ही जरूरी है. क्या बात होती है हमेशा जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा पता कंफर्म क्वेश्चंस हैं. कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को. अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे, हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और 5 मैच जीते आई है. एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है, क्या हो जाता है जब इतनी ज़्यादा नोन कंडीशन पे आप खेल रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस?
3: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो. आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना. एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो भी आपका पार्ट है, आपको वो प्रोफेशनली अच्छे वे में करना चाहिए, उसको पूरा 100% देना चाहिए. जो आज इंग्लैंड टीम का जो मिसिंग था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग लाइन लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा था बट बैटिंग में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं. सो ये एक बैटिंग जो जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं उसी की वजह से आज वो रनर्स अप बने हैं.
0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का. नमस्कार.
5: नमस्कार मैडम
0: जी. नाम बताइए अपना.
5: मैं महाराष्ट्र कोलर से सचिनपुरी बात कर रहा हूँ.
0: जी सचिन.
5: ब्लाइंड हूँ.
0: अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में. सचिन क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप?
5: मुझे इतना सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अटैक है वो इंग्लैंड के पास वैसा अटैक नहीं था क्या? इंग्लैंड की कहाँ से गलती हो गई? क्योंकि पहले छह ओवर में 62 रन और एक ही विकेट था उनका.
0: जी
5: तो इंग्लैंड की बल्ले गेंदबाजों से कहाँ गलती हुई? और इंग्लैंड के पास 180-185 रन का टारगेट होना चाहिए था.
0: जी बिल्कुल ये

0: पनप देने देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का, वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए। उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं। और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे, वो डेफिनेटली वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए।
1: चेतन बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर सेवर्ड फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में? आपको लगता है देयर वाज यू नो
0: ऐसा दिखा नहीं मुझे या कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई। कुछ गेंदें जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन सबसे बड़ी बात क्या, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को। देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की, ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की, उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे, इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे एंड दे फिनिश्ड इन 17.1, दैट्स अ ग्रेट थिंग।
2: तो मोना आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पे जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं?
3: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है, अक्रॉस द गेम्स, आप क्रिकेट हो हॉकी हो किसी भी खेल में, आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी, तो एक माइंडसेट है। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना, और वो तो हर टीम करती है लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 11 वाइड बॉल दे रहे हो, मतलब 2 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को, तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग, जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं हावी हो गया, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती।
2: जैसा कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद, वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं ग्राउंड पे, अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। वैशाली, ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या खास बात है आपकी जुबानी?
4: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही, उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं, क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम को दे सकते हैं, और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर। एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। एक टीम वर्क है यहाँ पे, तो ये ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है।
3: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर्स से भरी हुई है। तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, तो ऐसी टीम को आप बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम।
1: जी बिल्कुल।
0: और जो डिस्कशन होगा ना अभी मैच के बाद, कहते हैं ना रिव्यू होता है, आप वर्ल्ड कप हारे क्यों, जैसे अभी मोना बात कर रहे थे कि आपने 11 व्हाइट बॉल्स और एक नो बॉल, और वो जो 4 रन 22 के आए हैं वो नो बॉल के ऊपर आए थे, तो इसका मतलब आपने 16 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, और आपने 11 व्हाइट्स और एक नो बॉल तो आपने 12 गेंदे एक्स्ट्रा डाली हैं, तो 12 गेंदे एक्स्ट्रा डालने का मतलब ये हो गया 2 ओवर, तो अगर आप कैलकुलेशन करें इस समय मनीष 17.1 ओवर, 2 ओवर साथ मिला लीजिए 19.1 ओवर, और रन्स आप माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इंग्लैंड ये 150 में भी मैच जीतता था अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स और एक्स्ट्रा गेंदे ना की होती।
2: और आपकी बात को थोड़ा सा और पुख्ता करता हूँ, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक रील आई मेरे पास

0: में तो भारत की टीम के एक बोलर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और दो विकेट वो ले गए। आप लोग जानना चाहेंगे फास्ट बॉलर कौन थे?
1: बिल्कुल पता है,
0: आपकी बाईं तरफ बैठे हैं।
2: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जितनी हम शेयर कर सकें या उनसे जान पाए। चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान की जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी। उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नजर आती है?
3: देखिए, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नजर आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर हुए, आपने 4 मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था, या प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। आप 15 के 15 प्लेयर्स 4 मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं, तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप देखिए, यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है। यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए, तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का। मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के ही आइए। देखिए, दूसरी टीम्स भी आई हैं, वो भी लड़ने आई हैं, वो भी लड़ाई करेंगी, लेकिन जो मैंने अभी बात की गीतांजलि कि आप इतने बदलाव टीम में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि समस्या आई तो कहाँ आई, वो आगे गलतियां ना हो, उस पर हम कैसे सुधार करें, उस सुधार की बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना देखिए क्रिकेट की फैसिलिटीज बीसीसीआई ने आज के समय में हमारे प्लेयर्स को दे रखी है, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी फैसिलिटीज है। आप एक सीईओ जाकर आइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, आपको लगेगा नहीं आप इस कंट्री में हैं, आपको लगेगा मैं कहाँ आ गया। मतलब वो फैसिलिटीज, मैं कहता हूँ, मैं गया अभी रिसेंटली और लक्ष्मण को मैं यही कह रहा था, लक्ष्मण इज डायरेक्टर देयर, वीवीएस लक्ष्मण, कि हमारे जमाने में 50% ये फैसिलिटीज होती ना, मेरे 5 से 7 साल क्रिकेट और बढ़ जाती। ये बीसीसीआई ने किया हमारे प्लेयर्स के लिए। आपको उस जगह से हिलने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्लेयर बनना है। तो देखिए, कुछ चीजें जो हुई हैं गड़बड़, उन पे सुधार जल्द होगा, हमें नजर आएगा, बट अदरवाइज वी आर डूइंग वेल, नथिंग टू वरी।
2: तो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करना चाहते हैं वेट कर रहे हैं, नंबर वही है 2342-1084-2342-1085, और किसी भी तरीके से कोई टेंशन लिए बिना आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करें, मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चेतन शर्मा, फॉर्म इंडियन क्रिकेटर वैशाली माथुर, इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ हैं, और मैं हूं गीतांजलि सोनी, मेरे साथ है मुनीश चौली, और बहुत ही जल्द प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी आपको सुनवाने वाले हैं। जी तो आइए सुनते हैं।
4: So at 64, of just 49 balls with 10 boundaries in there. We need to get a mic to Beth at some point. There you go. You seem to like finals, don't you? You seem to step up.
5: Just happy to be here. I think, you know, it's been pretty well documented. We didn't quite make it this far in the last two ICC events. So, just woke up this morning, pretty grateful we made it this far.
4: Let's talk about how you play. First of all, with the gloves, I mean, brilliant takedown, the stumps with Danny Wyatt. And then obviously your batting. Let's talk about your keeping, first of all. What did it feel like out there?
5: Yeah, I've, you know, warmed up in the tournament. I think at the start I was a little bit rusty, but got some great support in our coaching staff with Gab Twining and Shell back with the gloves and Sean Flegler. So I've had plenty of help along the way. I can't take too much credit. It's been really nice to have some consistency with the gloves and to play a role in the field as well.
4: Tactical as well, to stand up to the stumps quite a lot today, it seemed.
5: Yeah, you know, it's obviously a conversation that happens between me and the bowlers. I'm more than happy to do what they tell me to. You know, it's their plans and their job to execute, and thankfully they back me to clean up anything that goes a bit awry. But we're umming and ahhing about that review off Dan, but we got there in the end.
4: And 64 of 49 balls, so you went pretty quickly. Moved around the crease a lot as well. What was your game plan today?
5: I think, like I spoke about in the semi-final, it's really important to settle the dugout in the power play in a big game. So I thought Foley hit the ball really well and then had an unfortunate dismissal. So, you know, and Phoebe came out and nailed it from ball one. So, you know, I just kept going and tried to make sure we got ahead of the game as early as possible.
4: Beth, congratulations on your play of the match today. Go and join your team.
5: Thank you.
0: Right then, Beth Mooney, 64 off 49 with 10 fours. Of course, there were sixes hit by Phoebe Litchfield. And of course, Vaishali, you will want to know from you. I think that you are a high level player, Beth Mooney. But wicketkeeper, batter, hona, Richa Ghosh, I remember.
1: बिल्कुल, और उनकी बराबरी हम कर सकते हैं क्योंकि ऋचा घोष भी आके जिस तरह से बल्लेबाजी मुनी करती है वैसे ही ऋचा घोष भी करती है और दोनों पावर हिटिंग शॉट्स खेलते हैं एंड आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग करते हैं. कहीं भी लेग या ऑफ कहीं भी अगर बॉल आते तो वो कोशिश करते हैं कि बॉल बाउंड्री तक ना जाए.
0: और अब समय है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है उन्हें जानने का.
4: Experienced player who's been around, seen many World Cups. Do you still get the same buzz? Does it feel the same today?
5: Yeah, you know, this has been on the calendar for a little while for us, so, you know, it's just nice to be part of the squad first and foremost and have a role to play, opening the batting and wicket keeping. So, yeah, just pumped to be here. There's been a lot of evolution in this group in the last 12 months and a lot of growth and some fun times as well. So, really nice that we've capped off the league today.
4: Of course, the whole tournament as well, your side has been so consistent. What do you think the key to your success has been?
5: Oh, I think just playing the game with a bit of conviction, a lot of freedom, a lot of bravery and backing each other and having lots of belief. You know, I mentioned we've got a lot of support on the sideline. Our coaching staff and support staff are amazing. Had a couple of niggles along the way that we've managed to, you know, have a full squad to pick from in a big game, and I think that, you know, we can't shy away from how important that is. So it's a great group to travel with. We've been on the road for 5.5 weeks, and you know, plenty of people have come over from halfway across the world to watch the final. Some a couple of days ago, some a few weeks ago. So we feel the love and feel the support here and back home.
4: Word on your new captain as well. Obviously, pretty exciting to come and win this tournament. What's she been like?
5: Yeah, so it's been amazing. She's just calm and composed and doesn't look too flustered, I think. She's put her own spin on the captaincy and been a great leader. I think she's been a great leader in Australian cricket for a long time. People probably just haven't been able to see that, and we're fortunate we get to see it firsthand. And you know, the girls have really got around her, and it's just amazing icing on the cake for what's been a pretty amazing tournament for us as a group.
4: Well, Beth, you've got a lot of silverware to look after. Put it in the home and cherishing it well. Well done again.
5: Thank you.
2: Well, it's Beth Mooney all the way, a player of the series and player of the match as well. And she made 238 runs in the series. Actually, she did, Mona, very, very well.
6: बिल्कुल बिल्कुल मतलब जिनकी हम पहले से बात करते आ रहे हैं लगातार कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है और उसके साथ मैच अवेयरनेस और विकेट के पीछे विकेट के आगे दोनों तरफ का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है जिस तरीके से उन्होंने कैच लिया था डैनी वेयर्ट का वो बहुत ज़बरदस्त कैच था. और आप देखिए 3000 से ज़्यादा वनडे में रन बनाए हैं 3200 से ज़्यादा T20 में रन बनाए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल गोल्ड मेडल जीता था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए तो काफ़ी सारे अपोनेंट्स के खिलाफ दुनिया भर के मैदानों पे रन बना चुकी है कई फाइनल खेल चुकी हैं. तो उनके लिए क्या कहा जाए सोने पे सुहागा है कि एक जीत और.
2: जी बिल्कुल. और हमारे पास तो सोने पे सुहागा हमारे कॉलर स्टूडियो में आते ही रहते हैं. एक और कॉलर जुड़ गए हैं. नमस्ते.
7: हेलो नमस्ते.
2: जी नाम बताइए अपना.
7: जी मैम मैं संत दिल्ली से.
2: जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
7: जी आपको भी भाई और मेरे मेरे दो सवाल और एक सवाल तो ये जो होती है या और ना?
2: जी अनफॉर्चुनेटली आपकी ना आवाज नहीं आ रही है ठीक से. हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कॉल करेंगे और आपकी आवाज हमारे हम सब सुन पाएंगे अच्छे से. बट आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं वो आज के खेल के बारे में जीत के बारे में और ऑब्वियसली अपनी क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन को नॉलेज को ज्यादा बढ़ाने के बारे में बात करना चाहते हैं. वैशाली چونکہ سب بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے کی پرفارمنسز کرکٹرز کی ہونی چاہیے, آپ نے کافی بار پریشر کی بھی بات کی, اور بار بار ہم یہی بات مانتے ہیں, جیسے اگر آپ جارجیا وال کو لے لیں, بہت ہی اچھا ان کے لیے تو ٹورنامنٹ رہا ہے, بٹ آج دیکھیے ان کا جو رن ہے 9 رن بنائے ہیں 6 بال پہ انہوں نے, تو یہ اتنے بڑے جب پلیئرز ہو جاتے ہیں, اتنا اچھا ٹورنامنٹ جاتا ہے,

0: और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, उसके बावजूद कैसे समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज.
1: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है. तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर. आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड. क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है, एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना है, वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है.
2: राइट देन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद ये देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं. नमस्कार, स्वागत है.
3: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले.
3: जी सर, मैं कर रहा हूं
2: जी. आपकी आपकी तरफ से ना कोई थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085. चेतन भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हो, लेकिन श्री चरनी टॉप विकेट टेकर हैं, 14 विकेट्स लेकर. मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर, लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ. ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं. और सबसे ज्यादा चौके अगर देखे जाएं तो स्मृति मानधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं. तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा है मैं चाहूंगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें.
4: देखिए, सबसे बड़ी बात चरनी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की. आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए. और चरनी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाएँ. और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडिल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही. आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं. स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को, कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है. हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था. कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल, 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला. देखिए खो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की, और वहाँ पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते. देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है. वही हुआ भारतीय टीम के साथ. अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नजर आएंगे, जब आप कंबाइन चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीजन था कि आपने एक मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए, वो 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ.
0: जी, और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज हम तक पहुंचे. हेलो,
5: सबको नमस्कार.
0: नमस्कार,
5: मैं वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ.
0: वेंकट सर, कैसे हैं आप?
5: जिला सूर्यापेट तेलंगाना से.
0: जी वेंकट, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं.
5: चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है.
4: जी बताइए.
5: नमस्कार, पहले
4: नमस्कार जी.
5: ऑस्ट्रेलियन टीम ने चैंपियन की तरह खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले इनको कांग्रेट. और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेन्स हो क्या वुमेन्स हो, गैप्स में शॉट्स ज्यादा खेलते हैं, हवाई शॉट्स बहुत कम खेलते हैं. हमारी टीम मेंस हो या वुमेन्स हो, हवाई शॉट्स अधिक से अधिक हवाई शॉट्स खेलते हुए आजकल विकेट खो रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चन है आपसे।
4: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे, रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो लगातार दो वर्ल्ड कप्स में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले दो साल के चैंपियंस कौन है? भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है, ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपेंस, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
0: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये ज़रूर मोना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
6: देखिए, T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिककर खेलना है, लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
0: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
6: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगे कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है, तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पे उतरता।
0: वेरी ट्रू।
2: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
1: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ, एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहां पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है, तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं।
0: जी बिकॉज चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफ़ी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज़्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है बिकॉज दे एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं।
4: देखिए मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया, या मीडिया को कोई चीज़ अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, ना ही ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीज़ें जो चल रही होती हैं मार्केट में, because I was the part and parcel of the Russian selectors.
0: Yes.
4: So 90%, 90 even 95% चीज़ें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती जो अंदर चीज़ें हैं, तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज़ चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज़ चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज़ तो मालूम ही नहीं है और ना ही कभी वो ज़िंदगी में बाहर आएगी और क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज़ अ लीडर, शी इज़ नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड अ साइड, एंड कैप्टन और लीडर में, कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है, वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे और वो बने ओनली 4 कैप्टन इन सो मेनी ईयर्स, तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में दुख लगता है। देखिए बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है, हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते। आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहे नहीं वो अच्छे नहीं खेल रहे, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी इंडिया हार की, नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन्ट इट, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप एंड दैट शुड कम इन आवर फैंस, कि नहीं अच्छा है ठीक है, हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, और वी यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स, दैट्स इट।
2: राइट देन, याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है, 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया, 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे, 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं। चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं, और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं।
0: हेलो हेलो,
2: राइट देन, आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली, बेस्ट बोलिंग एनालिसिस उनके बन गए, मेरे ख्याल से उससे बेहतर कर तो सकती हैं, लेकिन यादगार वो रहा। श्री चरणी भी 4 for 19, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए।
1: बिल्कुल, और राधा यादव भी है, आप शायद ऐड करना भूल गए उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट। एंड वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी। तो यहाँ पर दिखाता है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ। एंड अगर हम मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है, दोनों यंग प्लेयर्स हैं। तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहाँ से वो उनको गेन करना भी बहुत ज़रूरी है।
0: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज, और यू बीइंग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल। कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
6: देखिए ऐसी तो बहुत सारी है, जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी। मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहां खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी, और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की, उस तरीके की वो शॉट लगाती थी, और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती है और बहुत मोटिवेशन। अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए। तो कहां, हमने सफलता हम सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
0: आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे। एक और कॉलेज के हमारे साथ, हेलो,
7: नमस्कार सर। मैम
0: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
7: हम आकाश कुमार बोल रहे हैं बिहार पूर्वी चंपारण से।
0: जी आकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
7: सर मेरा पहला सवाल है सर कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड का फाइनल जब जब होता है सर, उसका भी दबाव से इंग्लैंड के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया का दबाव रहता है, इसी वजह से एक तरफा मैच चला जाता है क्या?
0: जी एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं चेतन ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं, इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट, व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम एंड दे कांट रियली अफोर्ड मच, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू टेल देम?
4: देखिए आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा। अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है। देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना, वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है। तभी तो कहते हैं ना, हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है। तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता, और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इमटेरियल आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जाकर बच्चा खेल सकता है, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज़्यादा समस्या है कहीं भी। अगर अच्छा क्रिकेटर है उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है, उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं। देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री, लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, दिस बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहाँ आपको मिलती है। इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जब से ये तीन तीन टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ तीन टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच की पता करना कौन से।
8: ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल മത്സരത്തിന്റെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണമാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണി. ഇതോടെ ഇന്നലത്തിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ സമാപിച്ചു. അടുത്ത പ്രക്ഷേപണം വൈകുന്നേരം 4:25 ആരംഭിക്കും. ശുഭരാത്രി. ജയ് ഹിന്ദ്.